कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें, और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो,

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 MHz और मैं हूं आपकी अपनी आरजी या जो आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुके हैं हमारे आज के प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज के साल 2026 जून महीने का सोमवार दिन और तारीख है 21। माफ कीजिएगा, तारीख है 29। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैरत और तकनीकी अभियंता तीनोक। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। 6:40 सुनिए कालोदारिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी। सुनिए आप बताने डायलेक्ट न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी, लोकल न्यूज और एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन डायलेक्ट न्यूज। सात बज के 40 मिनट पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में। आठ बज के 30 मिनट प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो इटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज। नौ बज के 5 मिनट रहेगा इंग्लिश न्यूज। 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्म एक अपशब जहां हो।

0: राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi

दोस्तों चलिए इस सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत सुरेश वाडकर की आवाज में।

नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आपने सुनी कालो भाषा में समाचार प्रसारण और अब शुरू हो रहा है हमारा रोजाना का सेहत सकारात्मक सोच से भरपूर कार्यक्रम सुबह सवेरे। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे याजू और अगले कुछ देर तक हम साथ मिलकर इस प्यारी से सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे। कहते हैं कि अगर सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। शायद इसीलिए हमारा बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि दिन की शुरुआत जल्दी उठकर खुली हवा में कुछ देर चलने और प्रकृति के साथ कुछ पल बिताने से करनी चाहिए। आज की तेज रफ्तार जीवन में हम सब अपने काम, पढ़ाई, घर और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि सबसे जरूरी चीज यानी अपनी सेहत को ही पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हर सपना, हर जिम्मेदारी और हर खुशी का अपना ही मजा है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे योगा की, हल्का फुल्का व्यायाम की, सांसों की अहमियत की और उन रोजाना की आदतों की जो धीरे धीरे हमारे शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाती है।

सुबह का समय हमारे शरीर के लिए बहुत खास माना जाता है। इस समय हमारा दिमाग रात भर के आराम के बाद बिल्कुल ताजा होता है। शरीर भी धीरे धीरे अपनी दिनचर्या के लिए तैयार हो रहा होता है। बहुत से लोग उठते ही तुरंत मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। मैसेजेस, सोशल मीडिया या खबरें देखते ही दिमाग पर एक साथ बहुत सारी जानकारी का बोझ पड़ने लगता है। अगर इसके बजाय हम सिर्फ 5 या 10 मिनट अपने लिए निकाल लें, खिड़की खोलकर ताजी हवा में गहरी सांस लें, आसमान की तरफ देखें, पेड़ पौधों की हरियाली को महसूस करें, तो दिमाग को एक प्राकृतिक शांति मिलती है। इसी दिन की शुरुआत भी हल्कापन लेकर आती है और तनाव भी कम महसूस होता है।

अक्सर लोग सोचते हैं कि योगा का मतलब सिर्फ मुश्किल आसन करना है, लेकिन असल में योगा का अर्थ है शरीर, सांस और मन के बीच संतुलन बनाना। अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम दिन भर अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। इसलिए किसी भी योगा की शुरुआत सांस पर ध्यान देने से करनी चाहिए। आज एक बहुत ही सरल अभ्यास की बात करते हैं। सीधे बैठ जाइए, कंधों को धीरा छोड़ दीजिए और धीरे धीरे नाक से सांस लीजिए। इस बार कोशिश कीजिए कि सिर्फ छाती ही नहीं बल्कि पेट भी हल्का सा बाहर आए, फिर उतनी ही धीमी गति से सांस छोड़िए। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। धीरे और शांत सांस लेने से शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, इससे तनाव कम होता है, दिमाग शांत रहता है और ध्यान लगाने की क्षमता में लगाने की क्षमता में भी सुधार आता है। रोज सिर्फ 5 मिनट का ये अभ्यास धीरे धीरे

आपको अंदर से हल्का और शांत महसूस करवा सकता है। दोस्तों, एक और बात जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है हमारे चलने और बैठने की आदत। दिन भर अगर हम गर्दन झुकाकर मोबाइल देखते रहें या कंप्यूटर के सामने बिना सीधे बैठे काम करते रहें तो धीरे धीरे गर्दन, कंधों और कमर में तनाव जमा होने लगता है। इसलिए हर एक घंटे में सिर्फ एक मिनट के लिए अपनी कुर्सी से उठ जाइए, कंधों को धीरे धीरे आगे और पीछे घुमाइए, गर्दन को बिना झटका दिए दाएं और बाएं मोड़िए, हाथों को ऊपर लेकर पूरे शरीर को हल्का सा स्ट्रेच कीजिए। यह सिर्फ एक मिनट का अभ्यास है लेकिन इसका असर पूरे दिन महसूस किया जा सकता है। याद रखिए, शरीर को एक ही स्थिति में बहुत देर तक रखना उसके लिए अच्छा नहीं होता। और इसी खूबसूरत बात के साथ वक्त हो चला है एक मधुर गीत का। गीत सुनिए, मुस्कुराइए और अगर आप घर पर है तो हल्का सा चलना या स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल ना भूलिए। लीजिए, पेश है आज का पहला गीत।

एक बार फिर स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपकी अपनी आरजी याजू। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और वो है हमारे पैर। हमारा पूरा शरीर दिन भर इन्हीं पैरों पर टिका रहता है लेकिन इनकी देखभाल हम सबसे कम करते हैं। सुबह उठकर जब हम 2 या 3 मिनट नंगे पैर किसी साफ और सुरक्षित जगह पर धीरे धीरे चलते हैं तो पैरों की छोटी छोटी मांसपेशियां सक्रिय होने लगती है। पैरों की उंगलियों को धीरे से मोड़ना, फैलाना और इडियों को हल्का सा उठाकर नीचे लाना भी एक अच्छा अभ्यास माना जाता है। इससे पैरों में रक्त संचार बेहतर होता है और चलने में भी हल्कापन महसूस होता है। अब जरा घुटनों की बात करते हैं। बहुत से लोग सीधे तेज चलना या दौड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन घुटनों को पहले तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। सीधे खड़े होकर एक एक घुटने को धीरे से मोड़ना और सीधा करना बिना किसी झटके के जॉइंट्स को धीरे धीरे गर्म करता है। इसके बाद अगर आप चलने या व्यायाम की शुरुआत करते हैं तो शरीर ज्यादा आसानी से उसका साथ देता है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि व्यायाम करते समय अगर तेज दर्द महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। शरीर हमें संकेत देता है और उन संकेतों को समझना भी सेहतमंद जीवन का एक हिस्सा है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर कितनी बार बिना सोचे समझे सांस रोक लेते हैं? कभी कंप्यूटर पर काम करते हुए, कभी किसी मुश्किल काम में ध्यान लगाते हुए या कभी तनाव के समय इस आदत का हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए दिन में 2 या 3 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने सांस पर ध्यान देने की आदत डालिए। न सांस को जबरदस्ती लंबा कीजिए और ना ही रोकने की कोशिश कीजिए, बस उसकी प्राकृतिक गति को महसूस कीजिए। ये छोटा सा अभ्यास मन

को शांत करने में बहुत मदद करता है। और अब वक्त है एक और प्यारे गीत का आनंद लीजिए। हम कुछ ही पलों में फिर लौटेंगे सेहत और सकारात्मक जीवन से जुड़ी और भी रोचक बातों के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे या आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 MHz से। अब आप सुन पाएंगे अपतानी दैनिक न्यूज़।

गुड मॉर्निंग ईटानगर और एक प्यारे सी सुबह का नमस्कार मेरे सभी सुनने वालों को। अब बताने दैनिक में न्यूज के बाद अब वक्त हो चुका है आपके अगला सेगमेंट मॉर्निंग इंफरटेनमेंट का। मैं हूं आपकी आरजे याजो और सफर का हम सफर। आज डेट है 29 जून 2026 और हर सुबह की तरह आज भी हम घूमेंगे वक्त के पन्नों में, देखेंगे कि आज के दिन दुनिया और देश में क्या बड़ा हुआ था और साथ ही जानेंगे हमारे अपने स्टेट की ताजा खबरें अरुणाचल टाइम्स के पन्नों से। तो चलिए तैयार हो जाए क्योंकि ज्ञान, खबर और मनोरंजन का ये बेहतरीन कॉम्बो शुरू होने जा रहा है। पर सफर पर निकलने से पहले सुनते हैं एक शानदार गाना जो आपकी सुबह को और भी तारोताजा कर देगा।

वेलकम बैक दोस्तों, गाने के बाद अब रुख करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ यानी ग्लोबल हिस्ट्री। आज के दिन यानी 29 जून को दुनिया के इतिहास में क्या बड़ी घटनाएं घटी, आइए जानते हैं बड़ी बातें। सबसे पहले बात करते हैं मशहूर प्लेराइट विलियम शेक्सपियर की। आज ही के दिन साल 1613 में लंदन के फेमस ग्लोब थिएटर जहां शेक्सपियर के प्लेज परफॉर्म किए जाते थे, एक नाटक के दौरान थिएट्रिकल कैनन फायर की वजह से पूरा जलकर राख हो गया था। साउथ अमेरिका के देश अर्जेंटीना में आज ही के दिन 1974 में एक बड़ा सियासी इतिहास बना था। इजाबेल पेरोन ने अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी और वो

दुनिया की सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। स्पेस साइंस की दुनिया में आज का दिन बेहद खास है। 1995 में नासा का स्पेस शटल एटलांटिस पहली बार रशिया के स्पेस स्टेशन मीर के साथ स्पेस में डॉक हुआ था। इसने यूएस और रशिया के बीच स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए एरा की शुरुआत की थी। और हाँ, जो गैजेट आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, एप्पल ने अपना सबसे पहला आईफोन आज ही के दिन साल 2007 में मार्केट में बेचना शुरू किया था, जिसने स्मार्टफोन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दुनिया का चक्कर तो लग गए दोस्त, अब रुक करेंगे हमारे प्यारे भारत की तरफ, पर उससे पहले एक और बढ़िया गाना आप सभी के लिए।

इस खूबसूरत गाने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे देश भारत के इतिहास के। 29 जून का दिन भारत के लिए क्यों मायने रखता है, आइए

प्लान में उनका बड़ा योगदान था। इंडियन एविएशन की बात करें तो आज ही के दिन साल 1931 में देश की पहली कमर्शियल एयर सर्विस लाइंस में से एक इंडियन नेशनल एयरवेज की शुरुआत के लिए पहली उड़ान की तैयारी शुरू हुई थी, जिसने आगे चलकर देश को आकाश से जोड़ा। पंजाब के इतिहास में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 1961 में अकाली दल ने नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग को लेकर अपना आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आगे चलकर मॉडर्न पंजाब का गठन हुआ। देश और दुनिया का इतिहास तो हमने जान लिया, अब वक्त है हमारे स्टेट की ताजा खबरों पर छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

दोस्तों, वक्त हो चुका है हम आज की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट लोकल खबरों का सीधा द अरुणाचल टाइम्स के पन्नों से। आइए देखते हैं क्या है आज की बड़ी हेडलाइंस। 10 डिस्ट्रिक्ट हिट बाय फ्लड्स, टोल राइजेस टू 3 इन कई पन्नों, हैवी रेन लाइकली। स्टेट में मानसून का कहर जारी है, बढ़ते फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 10 डिस्ट्रिक्ट बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर नए बने कई पन्नों डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है, जहां हाल ही में आई फ्लैश फ्लड के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीआरएफ की टीम्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उधर आईएमडी ने आने वाले दिनों में और भी हैवी रेन की वार्निंग जारी की है, इसलिए सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। मैसिव फॉरेस्ट फायर ब्रॉड अंडर कंट्रोल, पिछले कुछ दिनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए चिंता का सबब बनी एक मैसिव फॉरेस्ट फायर को आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद कंट्रोल कर लिया गया है। लोकल कम्युनिटीज और फायर डिपार्टमेंट ने मिलकर आग को आगे बढ़ने से रोका, जिसकी वजह से हमारे रिच बायोडिवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ बड़ी तबाही से बच गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों से जंगल के आसपास आग को लेकर सावधान रहने की अपील की है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी ने आज सुबह की खबरों में देखा आपने तागिन दैनिक में सुने समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने अगला कार्यक्रम में सदाबहार। दोस्तों, जैसे कि हम सब देख रहे हैं, मॉनसून का समय है और हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश में हर जगह बहुत ही भारी बारिश हो रही है। पर क्या आपने आप सभी ने कुदरत का ये गुस्सा दिख रहा है? अगर ये कुदरत यानी हमारी धरती माँ हमें जिंदगी दे सकती है तो वो इससे छीन भी सकती है। हम इंसानों को उस चीज की कदर करनी चाहिए जो वो हमें देती है। हम इंसान इतने जालिम हैं कि हर चीज को बिना सोचे समझे बस इस्तेमाल करते रहते हैं। हम उस माँ को नुकसान पहुंचाते हैं जो हमें एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए सब कुछ देती है, पर बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? वो हमसे बदले में कुछ नहीं मांगती, बस यही कि हम उसे संभाल कर रखें, उसकी देखभाल करें। ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम अपनी धरती माँ का ख्याल रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेड़ों की कटाई, गलत तरीकों से माइनिंग करना, इस प्लास्टिक फैलाना और पानी को गंदा करना बंद करें, क्योंकि ये सब हमारी मिट्टी, पानी और हवा को जहरीला बना रहे हैं। चलिए इसी गहरे विचार के साथ सुनते हैं आज का पहला सदाबहार गाना जो हमें सुकून भी देगा और सोचने

वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी ने आज सुबह की खबरों में देखा ही होगा कि याजाली पूसा और हमारे नए बने गई पंजौर डिस्ट्रिक्ट में हालत कितनी खराब है। भारी बारिश और बाढ़ ने वहां तबाही मचा दी है। पूरी जानकारी के लिए आप लोग सुबह की न्यूज को देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपने सालों पुराने घर खो दिए हैं। बस एक बार सोचिए दोस्तों, उन्होंने कितने साल लगाए होंगे एक एक ईंट जोड़कर अपना आशियाना बनाने में, पर एक पल में वही घर तबाह हो गया। मेरे आप सभी सुनने वालों से एक गुजारिश है, प्लीज मदद कीजिए, चाहे वो एक छोटी सी मदद ही

क्यों ना हो। आप कपड़े, कंबल, खाना या कोई भी जरूरत का सामान दान कर सकते हैं। इतना थोड़ा देने से आपका कुछ नहीं जा रहा दोस्तों, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने में एक बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। और याद रखिए, ऐसे अच्छे कामों में भगवान आपको बहुत आशीर्वाद देगा। चलिए उन सभी लोगों की सलामती की दुआ करते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना।

वेलकम बैक लिसनर्स, अब वक्त हो चुका है एक बहुत ही जरूरी जानकारी का, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय हमारे इस रेडियो स्टेशन को पूरे अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में लोग सुन रहे हैं और मानसून की आफत के बीच आप सभी की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

आइए जानते हैं आज 29 जून 2026 का वेदर अपडेट हमारे ईटानगर और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए। हमारी कैपिटल ईटानगर में आज टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। दिन भर हल्के बादल छाए रहेंगे और रात होते होते लगभग पूरे चांस है कि भारी बारिश होगी। तेज हवाएं चलने से भी अनुमान है। कई पन्योर और यजाली में यहां लगातार बारिश जारी है और आने वाले 24 घंटे के लिए हेवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। जो भी लोग यहां सुन रहे हैं, प्लीज लैंडस्लाइड वाली जगहों से, पहाड़ी रास्तों से बिल्कुल दूर रहें।

इस कमिंग से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां स्ट्रिक्टली वेदर एडवाइजरी जारी की है। बिजली चमकने के साथ साथ भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों को नदियां और पहाड़ी ढालनों के पास जाने से बिल्कुल मना किया गया है। पापुमपारे और लोअर सुबनसिरी जीरो इन डिस्ट्रिक्ट में भी सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर तेज झटकों के साथ बारिश हो रही है। निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ईस्ट सियांग, पासीघाट और लोअर सियांग वैली के हमारे लिसनर्स ध्यान दें, यहां मॉनसून काफी जोरदार असर दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से रोड पर पानी भरने और मिट्टी खिसलने की खबर है, इसलिए सफर करते वक्त पूरी सावधानी बरते और नदियों से दूर रहे। वेस्ट सियांग और अपर सियांग, यहां भी लगातार बारिश की वजह से नदियों का पानी उफान पर है। रिवर बैंक्स के पास जाने की गलती बिल्कुल ना करें।

रोहित है नामसाई, यहाँ भी मॉनसून पूरी तरह एक्टिव है। तेज थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। चांगलांग और तिराप ईस्टर्न बेल्ट में पहाड़ी रास्तों पर मिट्टी धंसने यानी मडस्लाइड का खतरा है, इसलिए अगर बहुत जरूरी ना हो तो ट्रैवल करने से बचें। लोकल अथॉरिटीज की हिदायत का पालन करें।

तवांग और वेस्ट कामेंग। हायर ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में धुंध बहुत ज्यादा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश लगातार जारी है। मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है दोस्तों, इसीलिए घर से तभी निकले हमेशा जब बहुत जरूरी हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सदाबहार सफर। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके हमारे इफेक्टेड भाई बहनों की मदद करें और अपनी धरती माँ से प्यार करें। बारिश बहुत तेज है, इसलिए अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। यह आकाशवाणी ईटानगर करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कहीं मत जाएगा, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार

0: प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये प्रतिनिधिमंडल दैथेन स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 7 0112371 7 0106 और 0112341444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, दिल्ली और शिलांग से अभी अभी आई देश विदेश की बड़ी खबरों के बाद वक्त हो चुका है आपके अपने मॉर्निंग एजुकेशनल सेगमेंट का, जिसका नाम है हेलो इंडिया नगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों आज 29 जून का दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत खास है। आज यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉफिक्स मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये ट्रॉफिक्स क्या होते हैं। दरअसल हमारे धरती का वो हिस्सा जो इक्वेटर के पास है, जहां सबसे घने जंगल, सबसे ज्यादा अनोखे जीव जंतु और सबसे ज्यादा बारिश होती है, उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश भी इसी खूबसूरत इकोसिस्टम का एक अनमोल हिस्सा है। ये दिन हमें सिखाता है कि इलाकों की बायोडाइवर्सिटी को बचाकर रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। आइए इस बारे में थोड़ा और बढ़िया से जानेंगे, पर पहले सुनते हैं एक खूबसूरत गाना जो आपकी सुबह को और भी हसीन बना देगा।

वेलकम बैक टू हेलो ईटानगर। दोस्तों आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई। आज ही के दिन यानी 29 जून 2014 को एक बड़ी रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि ट्रॉपिकल रीजन्स कितने बड़े खतरे में हैं। इसके बाद साल 2016 में यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली इस दिन को मनाने का ऐलान किया। इसका महत्व बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की लगभग 40% आबादी इन्हीं इलाकों में रहती है और हमारे सबसे ज्यादा जंगल भी यही है जो धरती को सांस लेने में मदद करते हैं। इस दिन का असर ये हुआ है कि अब पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज पर बातें हो रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर हमें एक बात और समझनी होगी, किसी भी अच्छे दिन को साल में सिर्फ एक बार सेलिब्रेट कर लेने से बदलाव नहीं आता। ये सच्चाई हम सब जानते हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम इसे हर दिन अपनी आदत बना ले। बेसिकली इट्स अबाउट डूइंग इट एवरी सिंगल डे, और ये हम में से हर एक इंसान की रोज की कोशिश होनी चाहिए। अगर हम रोजाना छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और पानी को बचाएं, तो हम सच में इस दिन का आदर कर रहे हैं।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: वेलकम बैक लिसनर. आज जब हम ट्रॉपिक्स और उनके सुकून की बात कर रहे हैं तभी हमारे स्टेट में मॉनसून का एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है. हर तरफ बहुत भारी बारिश हो रही है. ये पहाड़ और नदियां हमें ये याद दिलाता है कि अगर प्रकृति हमें जिंदगी दे सकती है तो उसके पास इसे संभालने और बदलने की भी पूरी ताकत है. कभी कभी हम इंसान अनजाने में उन सभी चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं जो हमें बिना मांगे मिली है. जो धरती माँ हमें एक स्वास्थ्य जिंदगी जीने के लिए साफ हवा और पानी देती है, हम उसे कभी कभी डिफॉरेस्टेशन या गलत तरीके से माइनिंग करके नुकसान पहुंचाते हैं. वो हमसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उन पहाड़ों और जंगलों को बचा कर रखें जो हमारा असली आशियाना है. आपने अभी न्यूज में भी सुना होगा कि हमारे कई पंजो डिस्ट्रिक्ट और याजाली पूसा के इलाकों में इस बारिश ने कितनी तबाही मचाई है. बहुत से परिवारों ने अपने सालों पुराना घर को खो दिया है. बस एक पल के लिए सोचिए दोस्तों, उनका दर्द कितना बड़ा होगा. मेरे आप सभी सुनने वालों से एक नम्र गुजारिश है, प्लीज उनकी मदद के लिए आगे आइए. आप कपड़े, कंबल, सूखा खाना या कोई भी जरूरी सामान हो सके दान कर सकते हैं. अब अपने हिसाब से आप जितने भी चाहे आप डोनेशन भी दे सकते हैं. आपका एक छोटा सा योगदान उन्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का हौसला देगा और अच्छे कामों में हमेशा भगवान का आशीर्वाद साथ रहता है. चलिए

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और आईएनएस इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन

0: राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नेताओं ने भारत के विजन महासागर, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति साझा प्रतिबद्धता के तहत भारत मॉरिशस की मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। अमरीका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमरीका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे और बातचीत आगे बढ़ सके। वेनेजुएला में बुधवार को आए 2 भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्ज ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। बचाव दल प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाक्यू ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम और माही में भी अगले 2 दिन तेज बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandra Ramgulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Minister said that during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The United States and Iran have agreed to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. The move is aimed at resolving their dispute over the Strait of Hormuz after days of military escalation threatened to derail the fragile ceasefire. The announcement came after multiple rounds of strikes around the Strait of Hormuz. The U.S. carried out strikes on Iranian military targets after accusing Tehran of violating the ceasefire by attacking commercial vessels. Iran responded by launching ballistic missiles and drones at U.S. military bases in Bahrain and Kuwait, while both sides exchanged fresh warnings over further escalation. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second defense investiture ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The president will confer gallantry awards to personnel of the defense forces, central armed police forces and state union territory police in the evening. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the armed forces, central armed police forces and other security agencies. The awards reflects India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. In Gujarat, the fourth Vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandaviya, alongside key state ministers and global diplomats, will take part in the two-day conference which aims to boost industrial development in central Gujarat region. The Anti-Corruption Branch, Delhi, has arrested the then Director General Health Services, Dr. Vatsal Agarwal, and Deputy Controller of Accounts in the Central Procurement Agency, Neeraj Chopra, in the case related to alleged large-scale irregularities in procurement of medicines, surgical consumables, and medical equipment. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. In hockey, India defeated England 3-2 in the penalty shootout after a hard-fought goalless draw in the reverse fixture of the FIH Pro League at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London yesterday. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से अभी अभी आई देश विदेश की बड़ी खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है थोड़ा ग्लैम, थोड़ा ड्रामा और ढेर सारे मस्ती का। स्वागत है आप सभी का आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है फिल्मी गपशप। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू। दोस्तों, जून 2026 का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, बट हमारे बॉलीवुड का तापमान एकदम हाई है। आज हम बात करेंगे इसी हफ्ते की सबसे बड़ी ब्रेकिंग

न्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इंटरनेट पर तहलका मचाने वाले ताजे ट्रेलर्स और अपडेट्स की ऑनगोइंग खबरों के बारे में। तो दिल थाम कर बैठिए, पॉपकॉर्न तैयार रखिए और चलिए इस फिल्मी सफर की शुरुआत करते हैं इस महीने के एकदम सुपरहिट और तेज ट्रैक के साथ।

दोस्तों फिल्मी गपशप में सबसे पहले बात करते हैं इस महीने यानी जून 2026 की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान की आने वाली फिल्म किंग का ऑफिशियल शूट कुछ महीने लंदन में शुरू हो चुका है। डायरेक्टर सुजॉय घोष इस मास एक्शन थ्रिलर को डायरेक्ट कर रहे हैं और सेट से आई खबरों के मुताबिक शाहरुख खान इसमें एकदम नए रोल लुक में नजर आने वाले हैं। फैंस के बीच अभी से ही एक्साइटमेंट का माहौल है। चलिए इस एक्साइटिंग न्यूज के बाद सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना।

दोस्तों चलिए अब रुक करते हैं थिएटर्स की तरफ और देखते हैं जून गास्ली रिपोर्ट कार्ड। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा धमाका किया है अक्षय कुमार और अर्शद वारशिक की मेगा कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल ने, जिसने ओपन होते ही दो दिन में 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी दिलजीत दोसांझ शारवरी और वेदांग रैना के इमोशनल ड्रामा मैं वापस आऊंगा ने भी थिएटर्स में धूम मचाई हुई है। तो अगर वीकेंड पर हंसना है तो थिएटर्स का प्लान जरूर बनाएगा। सुनते हैं अगला गाना।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500.
2: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: वेलकम बैक दोस्तों. अगर घर पर बैठकर बिंच वॉच करने का मूड है तो इसी हफ्ते ओटीटी पर बड़े धमाके हुए हैं. सोनी लीव पर गुलशन देवाइया और नेहा दुबिया की जबरदस्त सीरीज परफेक्ट फैमिली स्ट्रीम हो चुकी है, जो एक परिवार के अजीब राजों को खोलती है. वहीं अमेजन प्राइम वीडियो पर अमोल पाराशर की रूरल हेल्थ केयर कॉमेडी शो गरम चिकित्सा साला सीजन 2 भी आ चुका है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. और अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो करिश्मा कपूर की सीरीज ब्राउन भी आप देख सकते हो. चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ.

चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है। प्रोड्यूसर करण जौहर ने इसी महीने ऑफिशियली अपने करियर का सबसे बड़ा और अनोखा मूव चला दिया है। धर्मा प्रोडक्शन पहली बार मलयालम सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहा है फिल्म उरियान द एज ऑफ इल्यूशन के साथ। इस फिल्म में साउथ के मेगास्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और मंजू वारियर लीड रोल में हैं और इसका पहला लुक पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया है जो एक बेहद डरावनी और मिस्टिकल फोकलोर पर आधारित है। बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर अब साउथ में धूम मचाने के लिए तैयार है। सुनते हैं हमारा अगला गीत।

0: जनगणना से जन कल्याण सबका डेटा देश का मान, जनगणना से जन कल्याण आपका सहयोग देश की शान। अरुणाचल प्रदेश के प्रिय निवासियों, तैयार हो जाइए पहली डिजिटल जनगणना में भाग लेने के लिए।
1: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 चरण एक मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना की घोषणा की है। यह है भारत की पहली डिजिटल जनगणना।
0: 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
1: 1 मई से 30 मई 2026 तक जनगणना प्रगणक डेटा संग्रह के लिए हर घर का दौरा करेंगे।
0: कृपया सही जानकारी प्रदान करें और जनगणना प्रगणकों का पूरा सहयोग करें ताकि प्रभावी योजना और विकास संभव हो सके।
1: जनगणना से जन कल्याण, आपकी भागीदारी है जरूरी। जनगणना 2027 मिलकर बनाए एक बेहतर अरुणाचल, एक बेहतर भविष्य।
0: जनगणना से जन कल्याण।
2: दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आखिरी अपडेट की तरफ, जो इस हफ्ते ट्रेड सर्कल में सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है। स्त्रीतु की ग्रैंड कमाई के बाद श्रद्धा कपूर की नई फिल्म ईता का ट्रेलर इसी हफ्ते ऑफिशियली ड्रॉप हो चुका है, जिसमें उनका एक्शन अवतार देखकर फैंस क्रेजी हो गए। साथ ही खबर आ रही है कि स्ट्रीट 3 की प्री प्रोडक्शन और जवान 2 की स्क्रिप्ट राइटिंग पर काम इसी महीने बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया है। मतलब आने वाला समय सीक्वल्स और ब्लॉकबस्टर से बड़ा होने वाला है। दोस्तों, चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे इस सफर के आखिरी गाने का।

दोस्तों, ये था कार्यक्रम फिल्मी गपशप या आकाशवाणी ईटानगर का रन FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कहीं मत जाएगा, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस सम्मान को पाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। समारोह की परेड में भारतीय नौसेना और थल सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की, साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं

0: की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनके असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.
2: The news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hamini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandraram Gulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State Union Territory Police in the evening. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. In Odisha, lakhs of devotees thronged the pilgrim city of Puri this morning as the sacred Debasnan Jatra or the Snan Jatra or the ceremonial bathing festival of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra is being observed with traditional grandeur at the Sri Jagannath temple. The deities have been brought in a ceremonial procession to the Snan Bedi, where they will be bathed with 108 pots of sanctified water drawn from the temple's sacred golden well amid Vedic chants, blowing of conches and devotional music. The annual ritual held on the auspicious occasion of Deb Snan Purnima marks an important prelude to the world-famous Rath Yatra. In Gujarat, the fourth Vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandavia, alongside key state ministers and global diplomats will take part in the two-day conference, which aims to boost industrial development in central Gujarat region. Venezuelan National Assembly President George Rodriguez said that the death toll from the two powerful earthquakes that struck Venezuela Wednesday has risen to 1,450 after the two powerful magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes. Venezuela has recorded 430 light to moderate aftershocks, Rodriguez said in the latest government update on the national emergency. Earlier on Saturday, he said on state television that 3,238 people have been injured and 3,142 families affected by the disaster. Indian stock markets opened flat today, with investors and traders closely monitoring developments surrounding the US-Iran ceasefire and upcoming diplomatic discussions. Nifty opened at 24,062, up 6 points, while Sensex started marginally lower at 77,055, down 45 points in the early trade today. Meanwhile, the international benchmark Brent crude rose 1% to $72.78 per barrel, while US West Texas Intermediate crude gained more than 2% to nearly $71 per barrel. In the knockout stage of the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 for its first knockout match victory at Los Angeles in the United States. Stephen Eshtukuyo of Canada scored the goal in the second minute of second half stoppage time. Co-host Canada hung on with strong defensive play in the final minutes and advanced to face the Netherlands or Morocco in Houston on Saturday, July 4th. And that is the end of this news bulletin.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिल्ली से आई अभी तक की सभी बड़ी खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हमारे अगले सेगमेंट का, जहां चलती है सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास शो रेडियो ऑन डिमांड में। मैं हूं आपके आरजे याजू और इस आखिरी म्यूजिकल सफर का होस्ट। दोस्तों, ये शो मेरा नहीं बल्कि पूरी तरह से आपका है। आपके पसंद, आपके खास संदेश और आपके चुनिंदा गाने ही इस शो की जान है। तो चलिए बिना देर के खोलते हैं हमारे रिक्वेस्ट की मैसेजेस के पिटारे और शुरू करते हैं आज के पहले खास रिक्वेस्ट।

तो आज की हमारी पहली रिक्वेस्ट आई है सरिहाजन से, हमारे डेली लिसनर जोगेंद्र रोंगटे और उनकी फैमिली की तरफ से। जोगेंद्र जी ने आज हमसे एक बहुत ही आइकॉनिक और दर्द भरा पुराना गाना प्ले करने की गुजारिश की है, और ये गाना उन्होंने डेडिकेट किया है अपने सभी प्यारे दोस्तों को। चलिए जोगेंद्र जी और उनके दोस्तों के लिए फिल्म जंजीर से पेश है ये सबक सिखाता हुआ खूबसूरत नगमा, बना के क्यों बिगाड़े रे, सुनिए और पुरानी यादों में खो जाइएगा।

दोस्तों इस प्यारे हसीन गाने के बाद अब रुक करते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की तरफ जो हमें भेजी है हमारी एक और प्यारी और डेली लिसनर ज्योति सुरीन ने। ज्योति हर रोज हमारे शो को बहुत प्यार से सुनते हैं और आज उन्होंने हमसे एक बेहद रोमांटिक और सुकून भरा ट्रैक बजाने की डिमांड की है। तो ज्योति की खास पसंद पर और आप सभी सुनने वालों के दिल को चुनने के लिए पेश है ये प्यारा सा गाना तू सब कुछ मिला।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till the stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: वेलकम बैक टू रेडियो डिमांड. दोस्तों, गाने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए. और अब हमारी अगली मैसेज आई है नाहरलगन से, हमारी एक नई लिसनर दुयु तादू की तरफ से. दोस्तों, तादू ने हमसे रिक्वेस्ट किया है एक ऐसा ब्लॉकबस्टर एनर्जेटिक ट्रैक जिसने 90s में ट्रेन के ऊपर धूम मचाई थी, और आज भी जब ये बजता है तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं. तो दुयु तादू की खास फरमाइश पर फिल्म दिल से ए आर रहमान साहब का सबसे धांसू और एनर्जेटिक सॉन्ग पेश है छैया छैया.

दोस्तों चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो आई है बंदरदेवा से हमारे दोस्त आशीष की तरफ से। आशीष ने आज 90s के किंग शाहरुख खान का एक बेहद पैपी और सुपरहिट ट्रैक चुना है जो हर पार्टी की जान होता है। तो आशीष इस कमाल की चॉइस पर फिल्म बाजीगर से पेश है ये एवरग्रीन और आइकॉनिक सॉन्ग ये काली काली आंखें।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till the stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: वेलकम बैक टू रेडियो ऑन डिमांड. दोस्तों, गानों की ये महफिल लगातार आगे बढ़ रही है और अब हमारी अगली मैसेज आई है लालू का साम से हमारे एक और बहुत ही प्यारे लिसनर हबीबजुद्दीन की तरफ से. हबीबजुद्दीन जी ने आज हमसे डिमांड किया है 90s का एक बेहद ही स्वीट, मेलोडियस और दिलों को जीतने वाला ट्रैक, जिसे सुनकर चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है. तो लालू से हमारे दोस्त हबीबजुद्दीन जी की इस खूबसूरत पसंद पर फिल्म बादशाह से शाहरुख खान और ट्विंकल खन्ना का वो एवरग्रीन सॉन्ग पेश है, वो लड़की जो. वैसे मानना पड़ेगा आज शाहरुख खान की, उनकी गानों की रिक्वेस्ट लगातार आ रही है.

दोस्तों अगली रिक्वेस्ट आई है हमारे पड़ोसी स्टेट असम से हमारे लिसनर गीता जी की तरफ से। गीता जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया है गाना ओ मेरी लेला। वैसे गीता जी मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को लेकर थोड़ा सा अनश्योर हूं क्योंकि शायद स्पेलिंग की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन था, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ऐसे प्यारे गाने की रिक्वेस्ट की होगी। अगर ये वो गाना नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा मैसेज पे, और आप कल अपनी रिक्वेस्ट हमें दोबारा भेज सकते हैं, हम उसे कल जरूर शामिल करेंगे। तो फिलहाल गीता जी के लिए और असम के हमारे सभी लिसनर के लिए पेश है ये बेहद खूबसूरत ट्रैक ओ मेरी लेला।

दोस्तों अभी जो मैसेज आई है वो आई है सेंकी पार्क ईटानगर से हमारे रेगुलर लिसनर आरव की तरफ से। आरव ने आज फिर से एक बेहद खास गाने की रिक्वेस्ट की है। वैसे आरव, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपको ये गाना सच में बहुत ज्यादा पसंद है, लगता है कि ये आपके दिल के बेहद करीब है। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये गाना बजाने में कोई दिक्कत है, बस बात बस इतनी है कि जब भी ये गाना बजता है मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो जाती हूं। इसे अलग अलग दिनों में मैं तीसरी बार आपके लिए ये गाना प्ले कर रही हूं, पर इसका नशा हर बार नया लगता है। तो आरव की खास दिल से आई फरमाइश पर उनके लिए और देश के सभी वीरों के लिए फिल्म बॉर्डर 2 से सोनू निगम, अरिजीत सिंह और दिलजीत दोसांझ की आवाज में ये बेहद इमोशनल और एवरग्रीन ट्रैक पेश है, घर कब आओगे।

दोस्तों, ये था कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गैरत और तकनीकी अभियंता दिनयोग। दोस्तों, कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा, अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे कविता के साथ अरुण एफएम पर। तो बने रहिए। तो अब अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS इक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की संयुक्त परियोजनाओं से मॉरिशस में स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल

शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देंगे। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। वेनेजुएला में बुधवार को 2 जबरदस्त भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने बताया कि 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद देश में हल्के से मध्यम स्तर के 430 झटके महसूस किए गए। इस आपदा में 3,238 लोग घायल हुए हैं और 3,142 परिवार प्रभावित हैं। हजारों लोग अब भी दिन रात खोज और बचाव कार्यों में लगे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों का आकलन किया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। कनाडा का अगला मुकाबला शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड्स या मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, और आज पहले प्रसारण में आपके साथ ही आरजे याजू। उम्मीद करती हूँ आपका सुबह का सफर सुहाना होगा, और आगे के इस सफर में आपके साथ है प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी, और मैं आपकी रेडियो साथी कविता आपके साथ हूं। श्रोता, आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर, पर उससे पहले आइए झटपट नजर डालते हैं हमारी आज इस प्रसारण में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी। जैसे कि आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम फिल्मी लहर, 11:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलोडीज, 12 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज, 12:10 पर आप सुन पाएंगे चंद नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स, फौजी भाई बहनों का कार्यक्रम गीत वाला आप सुन पाएंगे 12:30 पर, 1 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज, 1:10 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम हेलो फॉर माइल्स, 2 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार, 2:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s, न्यूज हेडलाइंस आप सुन पाएंगे 2:58 पर, 3 आप सुन पाएंगे मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम, और 3:15 पर आप सुन पाएंगे तायक हमती श्रोताओं का कार्यक्रम, 3:30 पर आप सुन पाएंगे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्मी गाने, उसके बाद आप सुन पाएंगे 3:40 पर प्रवांचो श्रोताओं का समाचार, 3:45 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने, इदुमिस में श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 4 और 4:05 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गाने, 4:20 पर आप सुन पाएंगे तानसा श्रोताओं का समाचार। तो ये थी इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी, और आइए आज का ये सफर शुरू करते हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर से, और फिल्मी लहर में आज पहला गाना आप सुनने जा रहे हैं पठान फिल्म से, आवाज है विशाल ददलानी, शिल्पा राव, शेखर एवं साथियों की।

अरिजीत सिंह मीत ब्रोज नेहा कक्कर की आवाज में आपने सुना राब्ता फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे प्रोग्राम फिल्मी लहर।

0: आपने सुना जोनिता गांधी गुरु रंधावा के आवाज में सिमरन फिल्म का गाना।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

नीरज श्रीधर सुकृति कक्कर की आवाज में आपने सुना गोलमाल अगेन का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम फिल्मी लहर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को

0: सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honor, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honor. An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction, for leadership in environmental conservation and sustainable development. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State UT Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom with a focus on strengthening trade, investment and strategic economic cooperation. The Commerce and Industry Ministry said during the visit to Greece, the delegation will participate in presentations and startup pitches at the Athens Startup Business Incubator. The delegation will also hold focused roundtable discussions with Indian and Greek industry leaders at the Athens Chamber of Commerce and Industry, covering infrastructure, digitalization and defense, and food and agriculture. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch the Samagra Shishu Bal Swasthya Karyakram during the 16th conference of the Central Council of Health and Family Welfare in New Delhi today. The Ministry of Health and Family Welfare said it will carry forward the vision of Pehle Teen Saal Sampurna Dekh Bahal recognizing the critical

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आइए सुनते हैं हमारा प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का। तो लीजिए पहला सॉन्ग पे से लकी अली की आवाज में।

अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते गालिब जिंदा।

0: बीप राग की आवाज में आपने सुना ये गाना, आप श्रोता बने हुए हमारे साथ प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में।
1: आर्य हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए आर्य हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: प्रतीक खुहाड़ की आवाज में आइए सुनते हैं अगला गाना।

0: आपने सुना हरदीप कौर एवं नवराज हंस की आवाज में कुड़ी नाल इश्क मेरा। आप बने हुए थे हमारे साथ प्रोग्राम नॉन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे फौजी भाई बहनों का कार्यक्रम गीतमाला।
1: स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी

समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: जी हाँ श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर में अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब समय है चला है हमारे प्रोग्राम गीत माला का।

ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं फौजी भाई बहनों का कार्यक्रम गीतमाला, और इस प्रोग्राम में अब आइए सुनते हैं वांटेड फिल्म का ये गाना सुनिधि चौहान एवं साजिद वाजिद की आवाजों में।

0: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आइए सुनते हैं मोहित चौहान के आवाज में तमाशा फिल्म का ये गाना।

0: सुई धागा फिल्म का ये गाना आपने सुना पापोन एवं साथियों की आवाज में। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे प्रोग्राम गीत माला।
1: आर्य हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और

0: सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे साथ छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। ये शायरी हमारे सभी फौजी भाई बहनों को डेडिकेट करते हुए आइए प्रोग्राम गीतमाला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इस प्रोग्राम का ये लास्ट नंबर कुमार सानू की आवाज में, फिल्म प्यार तो होना ही था से।
3: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
4: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
3: उसे बताया क्यों नहीं?
4: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

0: श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे थे प्रोग्राम गीत माला, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today visited and offered prayers at the Navashakti Vinayagar Temple in Victoria, Seychelles, on the third day of his visit to the African country. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. He has since departed for India after concluding his successful three-day visit to Seychelles. Yesterday, Prime Minister Modi attended the National Day celebrations of Seychelles, marking the 50th anniversary of independence of the country. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. The Prime Minister was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. He also addressed the National Assembly of Seychelles, where he emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities. President Draupadi Murmu will present gallantry awards at the second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer gallantry awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and to State and Union Territory Police. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and other security agencies. The government has introduced the Improvement Notice Mechanism under the Legal Metrology Act 2009 through the Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2026. Under the new mechanism, businesses committing specified first-time procedural or regulatory non-compliances will be given an opportunity to rectify the deficiency before penal proceedings are initiated. The Ministry of Consumer Affairs said the reform aims to promote ease of doing business by encouraging voluntary compliance, reducing unnecessary litigation, and supporting a more trust-based regulatory framework while maintaining strong consumer protection. The Ministry added that the mechanism applies to manufacturers, importers, packers, dealers, repairers, traders, MSMEs and other regulated entities. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities in donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The bench of Justices M.M. Sundresh and Sheel Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. A Delhi court today extended till July the 11th the judicial custody of 10 accused in the NEETUG 2026 paper leak case. Being investigated by the Central Bureau of Investigation, CBI, the accused were produced before the Rouse Avenue court through video conferencing on the expiry of their earlier judicial custody. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involved in procuring and circulating NEETUG questions. Papers. Congress President Mallikarjun Kharge today took oath as a member of the Rajya Sabha at the Parliament House in New Delhi. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan administered the oath to Mr. Kharge, who got re-elected to the upper house from Karnataka. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms to voters in the National Capital Territory of Delhi will begin tomorrow. Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar, announced this while briefing the media in New Delhi today. He said booth-level officers will visit every household from tomorrow till the 29th of next month to distribute the enumeration forms and collect the duly filled applications from eligible electors. In Assam, fears of a major flood have intensified in Dhemaji district following reports of a temporary blockage in the upstream course of the Gai Nadi in the hills of Arunachal Pradesh. The obstruction is believed to have been caused by a massive landslide triggered by days of heavy rainfall in the region. The Dhemaji district administration has issued an urgent public advisory and warned that the blockage could trigger a sudden flash flood. In the FIFA World Cup, Canada beat South Africa 1-0 in the first knockout match at Los Angeles in the United States. And with that, we end this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आइए श्रोता दोस्तों, अब मजा लेते हैं प्रोग्राम हेलो फरमाइश का।
2: हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
2: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
2: जी, हमारा जाना पहचाना नियमित श्रोता लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी सर जी, कैसे हालचाल है सर? बारिश कैसी है सर आपके उधर?
2: हाँ जी, बारिश तो जोरदार हो रही थी कल तक।
3: बिल्कुल सर जी, इधर भी अब मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो चुका है मध्य प्रदेश में भी।
2: ओके,
3: अभी दो दिन से यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। जो किसान भाई है उनके लिए जो उज्जैन जिला है, जो उज्जैन बेल्ट है, आसपास जिले में अच्छी बारिश हुई है। किसानों के चेहरे पे भी थोड़ी चमक आ गई है, क्योंकि जो बोनी करने के लिए जो तो पर्याप्त तो बारिश होती है वो अब हो चुकी है सर इस तरफ।
2: ओके, बहुत ही बढ़िया खबर है ये तो
3: सर जी। जी, और बारिश तो जैसे कि हर व्यक्ति इंतजार करता है गर्मी के बाद में बारिश आने का।
2: जी जी,
3: और अब जब इससे बारिश का दौर आ रहा है तो अब धीरे धीरे अपने को पौधारोपण भी करना चाहिए, कहीं आपके आसपास बगीचा हो या जहां आपका खेत हो, क्योंकि ये जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो परिवर्तन होता जा रहा है,
2: जी, जी, जी।
3: इसके अंदर पेड़ों की कटाई हो रही है, उसकी वजह से ये सब ये डिस्टर्बेंस हो रहा है मौसम।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मौसम में बदलाव इसी के कारण आ रहा है।
3: जी जी जी सर जी,
2: जी।
3: तो सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास एक एक पौधे का रोपण जरूर करें और उसकी देखभाल भी करें।
2: जी जी जी, बहुत ही अच्छी।
3: हरा भरा देश रहेगा बिल्कुल, और बारिश का ये जो गर्मी है ये थोड़ा कम होगी, बारिश भी अच्छी होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे संदेश दिया आपने लोकेंद्र जी। तो इस संदेश के साथ अब कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे अपने दोस्तों को?
3: गाना सर सुनना है, फिल्म का नाम है पेंटर बाबू, और पेंटर बाबू का एक गीत है, ओ मेरे सजन बरसात में।
2: ओहो, बरसात के मौसम में बरसात का गीत।
3: जी बिल्कुल, बरसात के मौसम में बरसात के गीत बहुत सुंदर लगते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिमझिम बरसता हुआ बारिश और सामने रेडियो पे बारिश का गीत, क्या बात
3: बारिश
2: है?
3: का गीत बहुत सुंदर लगता है सर।
2: जी बिल्कुल,
3: तो
2: बिल्कुल।
3: ये आज हम हमारे मित्रों के साथ में जो जुड़ेंगे, भगवान सिंह जी है, प्रेम सिंह जी है, और सुनील झा जी है, राम बाबू मालवी जी है, योगेश जी है, तुकाराम जाधव जी है, दिलीप पाहुजा जी है, करणवीर पॉल जी है, गौतम राय बोले जी है, धीरज रबारी है, और अफजल भाई है, धीरज भाई है, ये सभी मित्र हैं हमारे, और हमारे ग्रुप है हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप, उन सभी के लिए और आकाशवाणी ईटानगर के लिए के ओ मेरे सजन बरसात में।
2: ओके, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है, तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी।
3: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: जी सर, थैंक यू
0: जी
1: सर। वहाँ का मौसम कैसा है?
0: हाँ जी, यहाँ आज तो थोड़ा थोड़ा धूप खिला हुआ है। कल तक तो बहुत ही जोरदार
1: हमारे
0: बारिश हुआ
1: भी
0: था।
1: वहाँ बहुत गर्म रहा है।
0: अच्छा जी,
1: अभी पेड़ के पास बैठ रहा हूँ और आप लोगों को डायल किया तो मिल गया।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर घर के पास ही है पेड़?
1: सर घर के पास ही है
0: अच्छा, पास ही है पेड़ ना, घना भरा।
1: और आप
0: अच्छा।
1: लोगों का जो आवाजें है ना, इतना मीठा है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आकाशवाणी ईटानगर का सभी प्रोग्राम सुनने में अच्छा लगता है।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ से बोल रहे हैं, और अपना अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए।
1: जी सर, मैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोहपुर असम से बोल रहा हूँ, हरदद्वारा।
0: हरिद्वारा। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: सर राजा हिंदुस्तानी फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में आए हो मेरी जिंदगी में, ये गीत सुना दीजिएगा।
0: आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। जी बहुत ही बढ़िया गीत है, जरूर सुनाएंगे।
1: जी सर।
0: और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: और सर ये गीत को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ पहले आपको
0: जी धन्यवाद।
1: और भाईकन मुंडा, अमल बसुमतारी, रमेश पात्र, विमल बसुमतारी, दिनेश शर्मा, नीलोत्पल दुआरा, देवदत्त और हेल्लो फरमाइश से जुड़े रहे सभी श्रोताओं के
0: सभी
1: लिए मैं
0: श्रोताओं के
1: ये
0: लिए
1: गीत डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरत जी, आपके वहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो क्लियर सुनाई देता है।
1: हाँ, यहाँ क्लियर सुना दीजिए।
0: ओके, आप FM में सुनते हैं कि आकाशवाणी ईटानगर में, कौन सा चैनल में सुनते हैं?
1: यहाँ मीडियम वेव पे चलती है ये।
0: अच्छा, मीडियम वेव पे आप सुनते हैं ना।
1: ये माने आप
0: ओके
1: लोगों का जो आवाजें है वो बहुत अच्छे से आते हैं,
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा
1: उन्होंने
0: जान
1: कोई
0: करके।
1: शिकायत नहीं दिया है।
0: अच्छा, जी, हाँ जी। तो
1: जी
0: हरत जी, ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए, तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से।
1: जी सर, थैंक यू।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश आनी वागरा साहब, सादर सा प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार हमारी ओर से भी आपको।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर पर। मानवर आप कैसे हैं? वहाँ मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत ही गर्म हो रहा है। एक दो दिन पहले झमाझम बारिश हुई थी, लेकिन तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं हैं और तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम और मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास।
0: मौसम की जानकारी तो मिल गई आपके वहाँ का। अब मैं अपने यहाँ का बताता हूँ आपको। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और यहाँ कल तक तो बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी। जी
1: जी बहुत अच्छा लगता है जब आपसे वार्तालाप होती है ईटानगर में। और हम काफी देर से प्रतीक्षारत थे, लेकिन लोकेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि थोड़ा सा रुको रुको रुको, इसके बाद उन्होंने कहा लगाओ लगाओ लगाओ लगाओ लगाओ लगाओ। तो मैंने तुरंत डायल किया और बस 2-3 मिनट में फोन लग गया और आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। और आपकी जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, खिलखिलाहट है, उसे सुनकर हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात है। जी, धन्यवाद। और साथ ही लोकेंद्र वर्मा जी को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा सभी को बताते हैं कब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और कब रिकॉर्डिंग
1: जी,
0: होगी।
1: और जब आपकी मेहनत से

0: इतनी लगन से, परिश्रम से, समर्पित भाव हम तैयार करते हैं हम श्रोताओं के लिए और प्रस्तुत करते हैं। किसी भी श्रोता को आप निराश नहीं कर, सबको बराबर अमृत करते हैं, ये बड़ी काबिले तारीफ है आपकी और मैं इसी का तो फैन हो चुका हूँ आपका।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोशिश करता हूँ कि सभी की फरमाइश पूरी कर सकूँ
0: जी
1: और इसी में लगा रहता हूँ, और आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, मैं बराबर प्रोग्राम बनाता रहूंगा
0: जी जी
1: जी।
0: आपका यही तो अपनापन स्नेह हमें आकाशवाणी ईटानगर की आकर्षित करता है। एक चुंबकीय आकर्षण से हम खींचे चले आते हैं आपकी ओर,
1: क्या
0: बहुत ही
1: बात है
0: खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है खानदान और गीत के बोल हैं, नील गगन में उड़ते बादल आ आ, आ, बस बादल आ जाए, झमाझम बारिश हो जाए, यही कामना करता हूँ।
1: जी, नील गगन पे बादल जल्दी आ जाए
0: जी
1: और आपके वहां झमाझम बारिश हो जी। और
0: जी
1: किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
0: जी सर्वप्रथम याद करता हूँ आरुणि वाघरा साहब को, साथ में है ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेंद्र वर्मा है और टेक चंद अग्रवाल है, राजू यादव है, राकेश कुमार जी हैं, पूरन वर्मा है, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, केशव प्रसाद शर्मा, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से सुन रहे सभी सम्मानित श्रोताओं के सादर समर्पित करता हूँ बागरा साहब के साथ में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदा प्रसाद जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी हृदय धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके और आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से आपका मित्र दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ जी।
0: जी दिलीप जी, आप कैसे हो बताइए।
1: बहुत ही अच्छा हूँ। लंबे अरसे के बाद आज आपसे बात हो रही है सर।
0: जी जी जी सही कहा आपने। और कहिए, आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी।
1: मौसम तो बड़ा ही खुश मिजाज हो रहा है। बरसात का इंतजार है।
0: अच्छा, बारिश
1: उमस
0: हुई नहीं अभी
1: बहुत
0: तक।
1: हो गई है।
0: अच्छा, हुई नहीं बारिश अभी तक।
1: बारिश 2 बार हुई थी। हल्की हल्की रोड को छिटकाव करके चली गई है।
0: जी जी जी जी यही दुआ करते हैं कि जल्दी आपके वहाँ पे झमाझम बारिश हो, ताकि गर्मी से आपको, उमस से आपको राहत मिले।
1: जी
0: जी तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में।
1: सर, आज धर्मवीर मूवी से गाना याद आ रहा है, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी।
0: ओके जी, बहुत ही बढ़िया गीत, और काफी दिनों के बाद मैं भी सुनूंगा इस गीत को।
1: जी सर,
0: जी और
1: अच्छा
0: किन लोग।
1: लगता है ये
0: जी
1: गाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे आप इस गीत को दिलीप जी।
1: सर इसको 3 जने हम सुनेंगे,
0: अच्छा
1: चाय की चुस्कियों के साथ में, शाम को 7:35 पर,
0: ओके
1: ईटानगर, आकाशवाणी सुनने वाले सभी तमाम साथी भाई बहन।
0: जी जी जी सभी को इस गीत को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं
1: धन्यवाद
0: आपके
1: सर।
0: पसंद का गाना धर्मवीर फिल्म से।
1: नाइस टू मीट यू सर।
0: थैंक यू, नाइस टू मीट यू टू।

0: दुनिया पर यार के बाहन छोड़ी हो
1: हेलो फरमाइश
2: हेलो
1: जी नमस्कार हेलो फरमाइश
2: हेलो सर जी नमस्कार
1: नमस्कार हेलो फरमाइश ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सर, आपने मेरी कॉल को रिसीव किया। एक साल से ट्राई कर रहा हूँ जी।
1: एक साल से?
2: हाँ जी।
1: क्या बात है, और आज पहली बार लगा आपका कॉल?
2: हाँ जी, नहीं दूसरी बार लगा।
1: अच्छा अच्छा, दूसरी बार, चलिए कोई बात नहीं, आज लगा तो सही।
2: जी। और बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ।
2: जी,
1: और आपका परिचय हो जाए।
2: जी मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ।
1: ओके सोनू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
2: यहाँ पे जी मौसम जो है ना थोड़ा सुहावना हुआ पड़ा है।
1: अच्छा जी।
2: हाँ जी, कल बारिश हुई थी पंजाब में।
1: ओके क्या बात है जी।
2: हाँ कल बारिश हुई थी तो आज मौसम सुहावना हुआ है और गर्मी से राहत मिली आज।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, और आगे भी बारिश होने के समय?
2: ईटानगर में कैसा मौसम है
1: जी? हमारे यहाँ तो लगातार एक महीने से बारिश हो रही थी।
2: हाँ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत हरा भरा शहर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा बारिश होती है ना, इसलिए यहाँ का जो मौसम है बढ़िया है।
2: हाँ जी हाँ जी, मैं देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी, कभी आइएगा अरुणाचल प्रदेश, हम आपको घुमाएंगे यहाँ की खूबसूरत वादियों में।
2: जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आवाज के माध्यम से आप तक हम पहुँच गए हैं।
1: जी
2: मेरे पैर कर ली वहाँ के।
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।

0: तुकाराम जाधव जी है।
1: ओके इन सभी के
0: हमारे दोस्त है, इनको डेडिकेट करना है गाना। आइए
1: ओके इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को। तो सोनू जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं
0: बहुत
1: आपके
0: बहुत
1: पसंद का
0: आपका भी धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करता हूँ।
1: ओके नमस्कार जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार
1: मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप बताइए।
1: ठीक है जी, प्रभु की कृपा है। आप कैसे हैं आप बताइए।
0: जी हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा है, हम भी बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
1: चलो जी, हम तो दुआ करते हैं आप ऐसे ही अच्छे रहे और हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम और अच्छे अच्छे गीत सुनाते।
0: जी, कोशिश जारी रहेगी जब तक जहाँ हैं।
1: जी
0: जी और आपके वहाँ का मौसम के बारे में बताइए, कैसा है मिजाज।
1: जी मौसम तो आजकल पता नहीं कैसा हो रहा है, कभी गर्मी हो जाता है, कभी जो है मौसम बिगड़ जाता है, कभी बूंदाबांदी होने लगती है।
0: ओके।
1: तो अजीब सा ही मौसम हो रहा है।
0: जोरदार बारिश अभी तक हुई नहीं आपके वहाँ।
1: नहीं, जोरदार बारिश नहीं हुई।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी बादल आते हैं काले, अचानक एकदम गरजते हैं फिर चले जाते हैं, बूंदाबांदी होती है बस।
0: अच्छा
1: जी, यहाँ
0: जी
1: तो बस दिल्ली NCR में एक तो प्रदूषण बहुत है यहाँ पे।
0: ओके जी।
1: हाँ जी, इसलिए बहुत परेशानी होता है, ट्रैफिक में भी, इधर उधर घरों में भी।
0: तो बारिश अगर हो जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी आपको गर्मी से।
1: जी पूरी उम्मीद है, ऊपर वाले पर भरोसा है, जरूर बारिश होगी।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी आशा के साथ कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए।

0: हेलो फरमाइश
1: नमस्कार सर।
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं शेख जफर हसन, कुवात जिला रोहतास, बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी शेख हसन साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हैं वह आपका मिजाज?
1: मिजाज अच्छे हैं
0: अच्छा
1: जी, सब लोग भी अच्छे हैं।
0: जी, बिल्कुल। मौसम कैसा है?
1: मौसम का तो मत कहिए, पूरा जून आखिरी जा रहा है, कुछ बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। और जहाँ तक गर्मी की बात है, 40 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ मर्रा पड़ रहा है।
0: जी,
1: ऐसे
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: उत्तरी बिहार में इससे भी ज्यादा है, 40, 42, 43 तक है, ये हालत है
0: जी, भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: जी। उधर तो नहीं सुना था कि आपके असम में, आपके वहाँ भी बहुत बारिश हुई है,
0: जी
1: सैलाब आ
0: हाँ,
1: गया है
0: जी, हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है एक महीने से,
1: जी, बहुत बारिश हुई।
0: तो यही उम्मीद करते कि बारिश थोड़ी कम हो जाए, आपके वहाँ चले जाए, ताकि आप लोगों
1: शुक्र
0: को भी थोड़ा सा राहत मिले।
1: आप ईश्वर दुआ सुन ले
0: जी बिल्कुल,
1: जी, कितना अच्छा बोल रहे हैं सर, बहुत पसंद हमको है
0: बहुत
1: आप
0: बहुत धन्यवाद जी।
1: जी। अंदाज बहुत अच्छा, गाँव से बात करने का जो अंदाज है,
0: जी
1: थोड़ा खुशी की यह बात है, बहुत इत्मीनान से और अच्छे से आप बात कर रहे
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: हैं जी,
0: जी।
1: इसलिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका तो नाम भूल गए, मैं
0: जी
1: दोबारा याद करा
0: जी
1: दीजिए।
0: जी जरूर। मेरा नाम बोके बागरा।
1: हाँ, बोके बागरा
0: जी, हाँ जी
1: जी, अब भुलाएंगे नहीं, बोके बागरा
0: जी। चलिए, अगर भूल भी जाते हैं तो मैं फिर से याद दिला दूंगा, कोई बात
1: जी,
0: नहीं।
1: बोके बागरा जी। आप तो हमारे समझ से अभी 8 साल से आपको हम सुन रहा हूँ
0: अच्छा, क्या बात है। जी,
1: जी,
0: ओके, बहुत ही अच्छा लगा।
1: तुझे एक शेर सुनिए, गौर कीजिए।
0: जी जरूर।
1: बदनाम क्यों करते हो तुम इश्क को ऐ दुनिया वालों, बदनाम क्यों करते हो तुम इश्क को ऐ दुनिया वालों, मोहब्बत तुम्हारा बेवफा है तो इश्क का क्या कसूर।
0: इश्क का क्या कसूर, वाह वाह वाह। जी बहुत ही बढ़िया
1: और आखिरी शेर,
0: जी।
1: जिंदगी कम है मुस्कुराते रहो, जब तक दम है मुस्कुराते रहो, सबसे हालात ना करो जाहिर, गर कोई गम है मुस्कुराते रहो
0: वाह वाह वाह, गम में भी मुस्कुराते रहें, वही है
1: जी,
0: विजेता।
1: इसलिए कि किसी को पता नहीं चले
0: जी,
1: जो हम बाजार करते हैं, बहुत
0: बिल्कुल
1: सारे दोस्त है गम, लेकिन हम अगर मुस्कुराए तो उससे जाहिर नहीं होगा कि ये गम में है,
0: जी, बिल्कुल
1: बर्दाश्त
0: बिल्कुल,
1: करने की क्षमता होना
0: क्षमता
1: चाहिए
0: होनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो
1: जी।
0: गाने के बारे में बताइए, कौन सा आप सुनना चाहेंगे?
1: अगर है तो इसको रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए सर।
0: ओके जी, ठीक है, मैं आपको जरूर
1: दूध
0: सुना।
1: का कर्ज
0: दूध का कर्ज का गाना आप सुनना चाहेंगे? ओके।

0: प्यास लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
1: क्या बात, क्या बात, क्या बात! बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने गाया शेख साहब
0: जी सर, सही भी
1: जी
0: दे दिए सर, में सर कॉल लगता है आपको
1: जी
0: बता देता चल
1: जी जी
0: कि
1: जी जी
0: वहाँ अनाउंसर भी होते हैं, कहीं मैडम भी होती है, तो वो
1: जी
0: सारे लोग पहचान गए। बहुत दिनों से एक कॉल में लगा सालों,
1: ओके,
0: तो
1: क्या
0: मौका
1: बात!
0: शेर भी सुनाता हूँ, एक पहचान है, और दो लाइन गाना भी गा लेता हूँ।

0: हेलो फरमाइश
1: अटेंशन,
2: आप श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो फरमाइश।
1: हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, दिल से दिल की बात।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के

0: बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। कहीं जाइएगा नहीं, उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s के साथ। और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।

0: शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान यूपीआई, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशेल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते

जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते

0: ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
2: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश

0: फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरूमध से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी टाइगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s। जी हाँ, हिट्स ऑफ 90s में आज आप पहला गाना सुनने जा रहे हैं, ये हसी वादिया फिल्म रोजा से। फिल्म रोजा बनी थी 1992 में। इसे AR रहमान ने कंपोज किया है, SP बाला सुब्रमण्यम और KS चित्रा के गाए इस गाने को। आइए सुनते हैं।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s, और हिट्स ऑफ 90s में अगली फिल्म जिसका हम गाना सुनाने जा रहे हैं वो है फिल्म सिलसिला है प्यार का। जी हाँ, ये फिल्म बनी थी 1999 में। रोमांटिक फिल्म है जो शिवानी देवधर द्वारा निर्देशित है, और इसे करिश्मा कपूर, चंद्रचूड़ सिंह और डेनी डेंजोंगपा ने इसमें अभिनय किया था। सहायक रोल्स में थे शक्ति कपूर, आलोक नाथ, जॉनी लीवर, अरुणी ईरानी, टिकू तलसानिया, दीना पाठक, नीलम सिंह, मिश्का खन्ना और अली हैदर इसमें शामिल है। फिल्म की एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्विट्जरलैंड के गोस्टार्ड में शूट किया गया था। तो इस फिल्म का ये गाना कुमार सानू एवं अनुराधा पौडवाल की आवाज में आइए सुनते हैं।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

आपने सुना है अलका याग्निक एवं विनोद राठौड़ की आवाज में जीत फिल्म का गाना। ये जीत फिल्म बनी थी 1996 में, राजखबर द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित ये एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान, सानी देओल एवं करिश्मा कपूर मेन रोल में थे। अमरीश पुरी, दिलीप ताहिल और आलोकनाथ साहेब भूमिकाओं में थे, जबकि तबु जो है एक स्पेशल एंट्री में दिखाई देती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक टिकट खिड़की पर सुपरहिट रही थी। आइए अब सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गाना कुमार सानू एवं अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

So.

नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़, मीडियम वेव्स सी पाक्सी सिप्सी चुमसी मीटर्स हो पाक्सी चिप हा किलो हर्ट्स माइक नहीं चलांग खमते खमती हो ने कुमायो मने वंतलांग ना लंगनी पीते सोंग हिंग पाक साउ तु नहीं इंग ना जी पी मई सोंग हिंग साउ हो नून जून नहीं साउ कौन कौ खाम लुक नंग प्रिया लोंग फॉय मई हनई थो।

आप सुन रहे थे खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। और अब समय हो चला है हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट, और साथ ही सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने। बॉलीवुड अपडेट में आइए चलते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म चौहान का टीजर रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है। फिल्म में कश्मीर और पत्थरबाजी को दिखाने के अंदाज पर श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी ने तीखी नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए सांसद ने जियो स्टूडियोज और फिल्म कर्ज की आलोचना की है। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने अपने पति सिरी सिकंदर के साथ शादीशुदा जीवन पर खुलकर बात की। फराह ने कहा कि शादी से पहले जिस चीज के पीछे लोग भागते हैं, उसे पाने के बाद उसका क्रेज कम हो जाता है। समय के साथ रिश्ते में प्राथमिकताएं बदल जाती है। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदना स्टारर कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस पर दम निकलता जा रहा है। 150 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी यह फिल्म दूसरे वीकेंड में बड़ा जंप लेने में नाकाम रही। रविवार को इसका कलेक्शन 3 हफ्ते पुरानी और इससे आधे सोच पर चल रही मैं वापस आऊंगा से भी कम है। रवि किशन भोजपुरी और हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम है। इन दिनों वो अलायंस शो में बतौर कंटेस्टेंट दिखाई दे रहे हैं। शो में रवि किशन ने अपनी सालों की जर्नी पर खुलकर बात की। इमरान हाशमी की सबसे कल्ट फिल्मों में से एक आवारापन के सीक्वल आवारापन 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक किरदार शिवम के रूप में जबरदस्त कमबैक करते दिख रहे हैं। दमदार डायलॉग्स और आइकॉनिक गाने तो फिर आओ एक के नए वर्जन के साथ इमरान का लुक होश उड़ाने वाला है। डायरेक्टर इम्तियाज अली की

भारत पाक बंटवारे पर बेस्ट लव स्टोरी में वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर रही है। पहले वीकेंड में फीकी कमाई के बाद जिस फिल्म को ट्रेंड एक्सपर्ट्स फ्लॉप मान रहे थे उसने अपने तीसरे वीकेंड में ओपनिंग वीकेंड से दुगुनी कमाई की है। इस तरह का ट्रेंड बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। मलाइका की ग्लैमरस तस्वीरें तो अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती है, लेकिन अब एक्ट्रेस ने बाथरूम में अपनी किलर फोटोज शेयर करके इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है। और आइए ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट में, और आइए बॉलीवुड अपडेट में चलते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। रेखा और एक्टर विश्वजीत के वायरल किसिंग सीन ने इंडस्ट्री में सालों बाद भी तहलका मचाया हुआ है। एक जर्नलिस्ट का दावा है कि रेखा के साथ ये किसिंग सीन प्लानिंग के तहत शूट किया गया था। साल 2014 की फिल्म रिवॉल्वर रानी में से जुड़ा एक पुराना किस्सा हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। दावा किया गया है कि शूटिंग के दौरान कंगना रनौत ने अपने को स्टार वीर दास को इतना जोर से किस किया कि उनके होठ से खून निकल आया। इस पर स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने इस कहानी को मनगढ़ंत बताया है। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल ने बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को तगड़ा भौंका काट दिया है। सारे वर्ड ऑफ माउथ के दम पर रविवार को फिल्म की कमाई में ओपनिंग डे के मुकाबले 60% से भी ज्यादा का तूफानी जंप देखने को मिला।

सचेतन साज भट्ट की आवाज में आप सुन रहे हैं वार टू का ये गाना, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वन चो श्रोताओं का समाचार।

0: ইজা আকাশবাণী ইটানগর কা হফাই মাচার পাহাই হবাঙে নাম হওয়া জহামদিং মাপাহাই
1: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। और आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और आइए अब सुनते हैं हिंदी फिल्मी गाने। इस प्रोग्राम में आइए आज सुनते हैं गुलाब गैंग फिल्म के चंद गाने। जी हां, गुलाब गैंग ये फिल्म इस फिल्म को 2014 में 61वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सामाजिक मुद्दों से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना गुलाबी, मालविका ब्रह्मा एवं शिल्पा राव की आवाज में।

हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

के दिखला दे।

0: आपने सुना कौशिकी चक्रवर्ती एवं मालविका ब्रह्मा की आवाज में फिल्म गुलाब गैंग का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz में, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे इदु मिस्मी श्रोताओं का समाचार।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्य।
2: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं इदु मिस्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
3: एचा आकाशवाणी ईटानगर थाला पुची जानियो हिखिनी आसोलिनी एतानिची इदु मिस्मी आहोला कीजी दारगालंबो अरुणाचल प्रदेश मा श्यांग लेपरादा लोअर सियांग तो ने किसा डिस्ट्रिक्ट उखमा आनिमी आयो में तांदो ब्रुरुगा ने आयो बंद बुबुबादा आहोगा इसियांग डिस्ट्रिक्ट मा लेदम आदिगोची ओंदो हूँ दा बाबा माहो आदिगोची ओंदो आनासी हुलुने है थोया आदिका मा आदिगा लदा ला होगा पासीघाट मचे याबगो ने ओयान आदिको माची में दाबुया लेबर इमु ला प्रगे इमु आने का पी फाबगलादा आहोगा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट मा सीजी माची में अनिमी ब्रुगे में सीजी ने मा

एबगा आछे तबा महो इगशा उखो डिस्ट्रिक्ट माब नाप्रा आयोग में आछे रूम बंदे बदा आहोगा लेपराडा डिस्ट्रिक्ट मा तोमी आयोग में बासार दोने सागो सर्किल आतिका मा कीदी माची में पाकु माची हाय दोयगा महो बासार सर्किल माची काम दाग दोने सागो सर्किल माची सागो साथी आछे दोला तुत्यां दे बदा आहोगा अनालिबा ईटानगर वेस्ट कमिंग लोअर सुबनसिरी सियांग पपुम परे लेपरदा लोअर सियांग वेस्ट सियांग दोने लोअर डिबमी डिस्ट्रिक्ट मा नाप्रा आयोशदा ने ईटानगर मीटरोलॉजिकल सेंटर मच में ला होगा कई पनर डिस्ट्रिक्ट मा याजाली पूसा आतिको ब्रू के में ना ही आतोडा बमा आरोजी नाला ने राज्यसभा एमपी ताइतागक में यू लाख पहुं याजाली आतिकोची एस डी वाजा ताजिंग पर्दुम आतोचा हाथे बदा अहोगा ब्रू के माने इमु अली के यहाँ बचा है इंदुदा ने एमपी में लगाने अली रुगम तेगा मा एनजीओ नंबर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश पुलिस इंडियन एयरफोर्स एस डी आर एफ तो ने एक इमो आलम्ब्रो में आरोग्य ने एमो खुआ जीबुदा लगादा आहोगा एचाहो अली आनीमी ब्रुगा महो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चे एक आयोग ने यामा में लो छिजिम ना ने एम पी में लागदा आहोगा कई पन्यर डिस्ट्रिक्ट याजाली पुसा तिकोचे ब्रुमा नामता ब इमु कापी माचे इथु कानी चेपाओ आया दुमा ने एचाहो लिबा इमु कासो शिगा बा एदो ने इकिशा इमु कान्य है एचाहो के चिगला जिमदा ला होगा एचेम तांदो सौरभ कुमार लाएगा इमुची इथो है हवा के अनुदो ने चिगला दा ला होगा आया दुमा ने पुसा तिकोचे ओंदो आसू हूँ आतो बमहो पितापुल आतिकोचे ओंदो हूँ एम आतो एदो ने ओंदो हुलुपी इचुगे एहाया बा माचे इमु तारहु अनाशे है एचाहो निपको कैंपस को आगो कोतला मा जिगादा ला होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स तो ने यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री कोको माने बुनी ईटानगर जोलांग आतिकोचे अरुणोदया यूनिवर्सिटी माने नॉर्थ ईस्ट एन एस एस फेस्टिवल अखगा मा अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पारनायक में गिबाने आ एमगा मा अनया नंबर प्राइज आपे गबदा आओगा मगा निगे बने भुनी लिबा आ फेस्टिवल अखगा मा सिक्किम मा चे एन एस एस टीम है बेस्ट डिसिप्लिन टीम अवार्ड आगा बमा हो आ फेस्टिवल है गुवाहाटी मा चे एन एस एस डायरेक्टोरेट में ईटानगर जोलांग आतिकोचे अरुणोदया यूनिवर्सिटी दोने ईटानगर हायर दोने टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टोरेट मा चे स्टेट एन एस एस सेल गो आरोगा गने अखगा दा आओगा अरुणाचल प्रदेश आतिका मा नाप्रा आयो दोने ब्रुगा कोलंबो बुने वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट दिरांग आतिकोचे निमास दोने ज्योति नगर एस एस बी क्वार्टर ओ आनंदो हम्बापा अमरु हुशुगा बाचे आर्मी पुलिस दोने आतिकोचे इकिशा इमा नंबर में आरोगा गने अमुला दा ला होगा एब आ बेलफास्ट आतिको ने फाइनल टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मेन्स क्रिकेट मैच अखगा मा आयरलैंड में इंडिया है खेगे रान माने आनेगा बदा होगा मेको आयरलैंड में एहा हुगा ने माऊ मंगा हु का पी रान हुतेगा बमा इंडिया में जिगा ने माऊ मंगा हु कासो रान हुतेगा ने एम एबोगा बदा लगा या कुछ ही मैच मा ऑस्ट्रेलिया में इंडिया है तारु विकेट माने आनेगा बदा होगा बुनी लॉर्ड्स आतिको ने इंडिया में माऊ इहू खे रान हुतेगा बमा ऑस्ट्रेलिया में जिगा ने हुलुखिनी ओवर मा कापी विकेट एबो बाएगा ने माऊ इहू कानी रान हुतेगा बचिदा आहोगा एता निचे ईद मिसमी आहो अली माओ दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ नाली ईद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया माहो एता नि हेंदो काफुली फुलुची चाशेची हम जी

सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं ईद उम्मीद श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों के सफर में आइए चलते हैं और सफर में तेरे मेरे सपने फिल्म के गाने आइए सुनते हैं। तो आइए पहला गाना सुनते हैं। इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक उदित नारायण एवं विनोद राठौर, हेमा सरदेसाई की आवाजों में।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: आप श्रोता सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। श्रोता, हमारी दूसरी प्रसारण सभा के प्रोग्राम से आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर आरजे अपर्णा के साथ। तो मुझे आपकी रेडियो साथी कविता को दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।
1: आर्य हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

आकाशवाणी इटानगर डिब्रीगढ़ मछौसा डुबा शशि सोम जुंजिलिंग रंगखत कौतारी पांग हजनेरा खकड़ो पांग अर रंगजा बलई बई खुमी थोड़ी जमसो तंगसा प्रोग्राम तफंग रहे मछौ रंगजा रुंगलांग रो खोहंग कौन का ममाइर अरुणाचल प्रदेश वंग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट नंग खामपंग रो लेडुम केंग नंग हमसी लेमन नंग अरो अकोम जुमन हम सै खाक तथेन तंग रो ऑफिशियल मेर रुंगलांग तथोक परम सौ मान नई वुवाक लोंगन जाम कम्युनिटी टॉयलेट हम असी नई वोंग मिशिन हम असीरा

ट्वेंटी इंटरनेशनल सेकेंड एंड फाइनल मैच पर मनी रंग जा वेलफास्ट नंग तो परजु आयरलैंड र वन रन मचाई तो गो फांत आयरलैंड मुंग र कचाई बुक रो इंडिया में टारगेट पर 155 रन नुंग तो गो रोत परजु आईसीसी वोमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेल नंग फांगलांग लॉर्ड्स नंग ग्रुप ए मैच नंग ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया पर ऑस्ट्रेलिया र इंडिया पर 6 विकेट में चेत इंडिया टीम र कचाई बुक रो ऑस्ट्रेलिया टीम में टारगेट पर 171 रन नुंग तो है ऑस्ट्रेलिया र 19 ओवर्स नंग दे 4 विकेट आउट कयांग रो 172 रन मन रो चेत गो रो तो रुंग रंग इतना थुम रो

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रम का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ फ्रेंड्स, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कोई कठिनाई आपके इरादों को डिगा ना सके। जी हाँ दोस्तों, आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज के इस चंद लम्हों के खूबसूरत सफर में आपके राह के हमराही बनने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं संचरण निष्पादक टी तांजांग, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीडे में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं रहूंगी, यानी कि आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा रहेगी। आप सभी के खिदमत में करने आई है एक बेहद खूबसूरत सी शाम, केवल आप दोस्तों के नाम, और बस कुछ ही पल में शुरू कर देंगे हम गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम का सेगमेंट। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे कविता का, जिन्होंने अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान बिल्कुल आप सभी के 100% एंटरटेनमेंट की है और जाते जाते मुझे स्टूडियो हैंड ओवर करके गई है। तो थैंक यू आरजे कविता। जी हाँ, और साथ ही अब से बस कुछ ही देर में हम सब आनंद उठा पाएंगे गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे, जी हाँ दोस्तों, अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
4: गुड इवनिंग ईटानगर।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर के इस सेगमेंट में। ये सेगमेंट एक कंपोजिट सेगमेंट है, कंपोजिट प्रोग्राम है, जहां ना हम आपकी केवल मनोरंजन करवाते हैं बल्कि समय समय पर ज्ञानवर्धक जानकारी या फिर जो है दोस्तों छोटी मोटी स्टोरीज भी सुनवाते हैं आप सभी को। आज मैं इतिहास के पन्नों को पलटने जा रही हूं, देखते हैं कि 29 जून को आज के दिन इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी थी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को, 1613 में लंदन में शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर हेनरी एट नाटक के प्रदर्शन के दौरान लगी आग से सब नष्ट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, 1888 में आज ही के दिन शास्त्रीय संगीत की पहली व्यावसायिक रिकॉर्डिंग की गई थी। 29 जून में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने फेडरल एड हाईवे एक्ट पर हस्ताक्षर यानी कि साइन करके अमेरिका में इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम बनाने का मार्ग का प्रस्ताव किया था। 1974 में सोवियत संघ की महान अंतरिक्ष यात्री पावल पोवचिक को उनके अंतरिक्ष मिशन सल्यूट थर्ड के लिए लॉन्च किया गया था। 2007 में एप्पल कंपनी ने अपना पहला क्रांतिकारी टच स्क्रीन स्मार्टफोन, जी हाँ, ओरिजिनल आईफोन को बाजार में उतारा था। है ना एक दिलचस्प बात दोस्तों। 2016 में इराक के बगदाद में हुए विनाशकारी बम धमाकों में 290 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत का विशेष इतिहास आज के दिन बहुत ही खास रहा। 1966 में, जी हाँ दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी और डिफेंडर परगट सिंह का जन्म हुआ था। उनकी कप्तानी में भारत ने दो बार 1992 और 1996 में ओलंपिक में भाग लिया। 2008 में आज ही के दिन चंद्रयान एक यानी कि वन पर लगे मून इंपैक्ट प्रोव यानी कि MIP को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया गया था। तो ये थी जो आज के इतिहास के पन्नों से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब देर ना करते हुए आपकी थोड़ी सी मनोरंजन भी करवा देते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ। उम्मीद है आप सभी को बेहद पसंद आने को है। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत और रोमांटिक गीत के साथ ही हमारी आज की जो है गुड इवनिंग ईटानगर का जो सेगमेंट है अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आएंगे। बहरहाल, अब से बस कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नुक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

आचार सुनेंगे। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेगी वीरता पदक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी याचिका पर तत्कालीन सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बताया। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश होने की पूर्वानुमान किया है जारी। पुरुष क्रिकेट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 रन से हराया। ICC महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह

समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। यह सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्र में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरियों को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित चुने हुए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्कालीन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और सिल नागू की बेंच ने याचिका की तत्कालिकता पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने की याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों के आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। महाराष्ट्र के परभूमि में एक कमान इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने युवा से नौकरी मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बनने को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्य बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक गुणवत्ता के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया। नीट यूजी परीक्षा लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रॉन्ज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 15 जून को रॉन्ज एवेन्यू कोर्ट में 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत आज तक बढ़ा दी थी। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट यूजी प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने और प्रसारित करने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जांच कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के जिन छात्रों ने पहले ही दो विदेशी भाषाएं चुन ली हैं, उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य सेतु के दूसरे चरण, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनिमय और भारत के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और इलेक्ट्रॉनिक

0: स्वास्थ्य रिकॉर्ड EHR मानक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के तत्वावधान में विकसित इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाना, अंतर संचालन नियता को मजबूत करना और देश के डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को तेजी से अपनाना है। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये कदम स्वस्थ भारत और अधिक डिजिटल रूप में सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण विस्तार का उल्लेख किया और कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है। इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई है। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। यह प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 के माध्यम से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक और विनियमात्मक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियमकाय ढांचे को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की भी सलाह दी गई है। पुरुष क्रिकेट में आयरलैंड ने भारत को दूसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक रन से हरा दिया। इस जीत के साथ आयरलैंड ने दो मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अपने नाम कर ली। बेलफास्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन बनाए, जबकि जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट खाकर 153 रन ही बना सके। आयरलैंड के जय मुद्रा ने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। ICC महिला T20 विश्व कप में कल रात ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट Gallantry Awards at the Second Defence Investiture Ceremony of 2026 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. The President will confer Gallantry Awards to personnel of the Defence Forces, Central Armed Forces and State Union Territory Police at 5 p.m. These awards are given away in recognition of exceptional acts of bravery by personnel of the Armed Forces, Central Armed Forces and other security agencies. The awards reflects India's continuing battle against terrorism, insurgency and hostile threats across Jammu and Kashmir, the northeast and along the country's borders, while also recognizing acts of extraordinary courage in aviation, maritime operations and humanitarian missions. Prime Minister Narendra Modi today visited offered prayers at Navsakti Vijayanagar Temple in Victoria, Seychelles, on the third day of his visit to the African country. He also met the members of the Indian diaspora there. Later, the Prime Minister paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park today. He has departed for India after concluding his successful three-day visit to Seychelles. The Central Board of Secondary Education today issued guidelines on the three language policy. In a statement, the board said that the current batch of class 10th will not have to follow the new language policy. It also said that for current batches studying in class 7th, 8th and 9th will also not to be required to give the board examination in the third language when they reach class 10th. CBSE has further stated that students in the 7th, 8th and 9th classes who have already opted for two foreign languages will be allowed to continue with the same, while studying one additional native Indian language. The board said the grade-appropriate resource material will be made available in the time-bound manner. The government has introduced the improvement notice mechanism under the Legal Metrology Act 2009 through the Jan Vishwas Amendment of Provisions Act 2026. Under the new mechanism, businesses committing specified first-time procedural or regulatory non-compliances will be given an opportunity to rectify the deficiency before penal proceedings are initiated. The Ministry of Consumer Affairs said that the reform aims to promote ease of doing businesses by encouraging voluntary compliance, reducing unnecessary litigation, and supporting a more trust-based regulatory framework while maintaining strong consumer protection. The Supreme Court today refused an urgent hearing on a PIL seeking a court-monitored probe and forensic audit into alleged financial irregularities in donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The bench of justices M.M. Sandres and Ashil Nagu questioned the urgency and directed that the plea be listed after the court reopens following the summer vacation. A Delhi court today extended till July 11 the judicial custody of 10 accused in the NEET UG 2026 paper leak case being investigated by the Central Bureau of Investigation. The accused were produced before the Rose Avenue Court through video conferencing on the expiry of their earlier judicial custody. Earlier on June 15, the Rose Avenue Court had extended the judicial custody of the 10 accused till today. The CBI has so far arrested 13 accused in the case and is investigating an alleged network involving in procuring and circulating NEET UG question papers ahead of the examination. Congress President Mallikarjun Kharge today took oath as a member of the Rajya Sabha at the Parliament House in New Delhi. Vice President and Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan administered the oath to Mr. Kharge, who got re-elected to the upper house from Karnataka. That's all in the news bulletin. Namaskar.
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
3: अबे आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ बा नोक्ते प्रोग्राम अठुए सैनहम वैमंगा लाडंगता तेजा जुनजंग रोगनी वैनिकु तारिक हुम्बेजा कोबर चोको एहन तुम्हंग रुतुम में कोबर है डंके इस सियंग लेपारा डा ले लोअर सियंग डिस्ट्रिक्ट नंग रंग पंगपेट पुमे मिन्य न्यूचा न्या रंग चम्मे के नमे चोटेट इकी इस सियंग डिस्ट्रिक्ट नंग डंके लेडुम हाजा को जंग को हुम वैन थे मालूम ngale bane khu rang chi pho re ke jo kho pa lit la me nga me chot de ki ngale man van ni cha thut mil le public haso van the lum nam nam nga are le ko du kan van ram chi si re ke nga me min chot de ki mi nya nyu cha ma a cham te nga me te chot de mi lower siang district nang min rang pet rang pang pet pu me cg ha ko cg le magi ke wa check post ke ko हारुला में सीजी जो को लुमलोई तंग के नले जो मेवा पब्लिक हे पेसी रंग अडोंग हे में पुलिस नंग चिंग के इके नमे चुटे देखी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट मिन रिडी जो केवा पिट नले बासार ले सागो सर्कल वा हा हे मिन जो में लुमे के नमे चुटे देखी अको छापु के मिन या रंग चीसीट इके नले अरे चीसीट के पे जो रूप दी को बा जे सोक मिन नंगा बसर सर्कल वा कमडक हा के को हा रुला में सागो साडी लंपुमिन बुअन रे के ngame चुटेट एकी इटानगर वा रंगपोंग रंगपे जे जत तंग सेंटेट में चु जत थुके ही अरे जुन रोक नी वैन ngit पु में जुलाई वैन थे तारिक तो को अरे जा बंगा को रंगपोंग रंगपे न्या रंग जो दंग मिंगा में अरुणाचल वा चेंतो डिस्ट्रिक्ट हे रंगा राज्यसभा एमपी ताई तागंग में लाख इंगित गुन को एक कई पन्योर वजाली के व पोसा हा डांग को जो मेलुम फोटा व मिन्यन हे हो हे रंगा अरे गुन पे अतेंगा व नाडा बुडा ले ताई अरुण में चो को एक एस डी ओ ताजिंग पाडुंग नंगा नले अरे जो लुम ता व मिन्यन रित अमा ते हे रंग रंग सोम को एक नले चिंतो पब्लिक NGO, District Administration, Police, Indian Air Force, SDRF le ahen chito mitnyen me lagi wakta ahe nang ate me dangkwa nga ke nga. Nga le ate me public he nang rang pan rang nyak le chang phong khuam rang rosap eke atwi rang pet sampwe ko. Maja hawa kem jang ko po sa hawa jo me lum ko ma wa Saurav Kumar mangpe chuklam wak eke SDRF, NDRF le police he me. किमिन पुलिस दम को ngame chute deki are mang pe nya ranglam di ko ba chuwa ke ke are mang chu dam ko rit te pe vanram la dang ta ngale van the ma te pumin lam thu ngame chute deki governor lieutenant general kt parnaik retired me north east national service scheme tang a twenja program ngale ku hwan ko katwa ngale ate are ko अते में कंपटीशन दंग व जेनते हे नंग प्राइस पे फनकोवा ngale ko sikkim nss team me best discipline team prize pe chu ke ngame chu tet eki are program pe arunoday university itanagar ko dangwa ngale are pe youth le sport ministry me hwenwa anga are ja banga youth ku hwan pe guwahati wa NSS tang regional directorate le Arunoday University le Nang State NSS Directorate of Higher and Technical Education mahuanwa anga maja dirangwa Nimas le KV school jangkowa wunko charam mitet torang wanme khamwa ngale arepe SSB tang rokram battalion ko keko dangtha athinme sampue ko kamusi wakgeke ngame chutet eki मजा रंगपन मैच नी लुअम थीन सीरीज को आयरलैंड में इंडिया नंग रन थे में जेने के बेलफास्ट हा को ngame chujet thuke ke mi wa he tang T20 international cricket to lumin ko ireland me cha the ru banga van banga run wetwa mi new he cricket ko dang ke australia me india nang wicket erok me jene hi london wa lords ko maja इंडिया में चाटे रोक इंगित वेंटे रन वेटवा ngale australia में चाटे रोक इंगित वेनी रन पे विकेट बली ngale छिवेनिकु ओवर को जेन एही ngame चोजत थुकेके आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ वा नोकते खोबत पे अतो को थजारंग थोनेके अदेनी नबा अतो सैंपल को थेचुटे ट्वेन अदे नंग नोकते सेसे प्रोग्राम को खबंग को गनमंग होसाई वा रुएन्यान से एचु तेडन

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नोक्ते समाचार। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, तो सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360.

0: degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इवनिंग ड्राइव के इस सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी देर से वो प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करे जा रहा था। निराशय के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। जनवरी की सर्दी हवा में उसे सिर्फ एक शर्ट पहने देख बेंच पर बैठे लोगों की निगाहें बार बार उसी की तरफ चली जा रही थी, मगर वो अपने ही धुन में खोया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अचानक तेजी से चलता हुआ प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर जा पहुंचा। उसके बाद क्या होता है मैं बताती हूं इस बहुत ही एक खूबसूरत स्टोरी के दौरान। चलिए पहले आपको सुनवा देते हैं एक प्यार भरा गीत। एंजॉय कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, वो अचानक तेजी से चलता हुआ प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर जा पहुंचा। उसने जेब से एक डायरी निकाली और खोलकर उस पर लिखने लगा, पापा मुझे माफ कर दीजिएगा, आपने समझाया, मुझे समझाते रहे कि जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाए मगर एक रास्ता सदैव खुला रहता है, भले ही वो हमें देर से मिले। मगर पापा, सच तो ये है कि लाखों का कारोबार डूब जाने के बाद अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैं जा रहा हूं आप सबको छोड़कर हमेशा के लिए, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। लिखते लिखते शब्द धुंधले पड़ने लगे और आंसुओं की धार बह निकली। वहां से उतरकर पटरियों के समांतर बढ़ता चला जा रहा था, न जाने कहां। चलिए आगे मैं बताती हूं क्या होता है, लेकिन इससे पहले एक और गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, पक्षियों के समांतर बढ़ता चला गया। काफी दूर निकल आने पर उसने नजर घुमाई और चारों ओर देखा। कोहरे के सिवा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वो पटरियों के बीच जाकर आंखें मीच कर लेट गया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई मगर ट्रेन नहीं आई। आंखों के जो सुनी सुनी आंखें हैं उसे वो आसमान को देखता, कभी आंखें मीचता तो लेटे लेटे वो न जाने क्यों उकताने लगा, बोर होने लगा। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। शाम होने को हो आई थी। वो उठा और वापस प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वो क्या देखता है मैं बताती हूं आगे आगे। एंजॉय कीजिए एक और खूबसूरत सी गीत को।

दोस्तों वो प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद जो है उसने देखा कि सभी ट्रेनों के आवागमन का समय जो है वो बिल्कुल लेट थी। कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो चुकी थी। अब क्या करूं। चार कदम और बढ़ा ही था कि सामने के एक बुक स्टॉल दिखाई उसे पड़ गया और वहां जाकर वो किताबें उलट पुलट करने लगा। एक किताब खोली और पन्ने पर छपे काले अक्षरों पर अपनी नजरें गड़ाने की कोशिश करने लगा। वहां लिखी हुई थी कि किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जिंदगी जीने का नाम है, हार के रुकने का नाम नहीं। आगे बढ़ते रहो। और यहीं से न जाने क्यों उसके मन में जो है एक इच्छा जीने की फिर जग गई और उसने ना रुकते हुए अपने कदमों को अपने मंजिल की ओर बढ़ा दिया। चलिए सुनवाते हैं इस प्यार भरे इंस्पिरेशनल गीत को।

जी हाँ दोस्तों, जब जब आप जिंदगी के इस रेस में हारने लगो तो खुद को भरोसा दिलाओ कि वो खिड़की वहां खुली हुई है और वहां से रोशनी बस आ ही रही है। मुझे आगे बढ़ते जाना है और मंजिल मुझे पाना ही है। चलते रहने का नाम ही तो जिंदगी है ना दोस्तों?

0: दोस्तों, इस बेहद इंस्पिरेशनल गीत के साथ ही हमारी आज की इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम अब यहीं पर संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए छोटी सी स्टोरी तथा जो नजराने हमने पेश किए वो बेहद पसंद आए होंगे। आप इस प्रोग्राम को सुन रहे थे FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे, जी हाँ, शाम की महफिल के साथ।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.

0: 6.7 surround sound? Yes. Advanced level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
1: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: शाम की महफिल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जी हाँ, आज सोमवार है और पक्का आप सभी लोग अपने अपने काम काज पे आज तो गए ही हैं, और जो है इस वक्त हो सकता है कि आप अपने घर की ओर लौट रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि घर में पहुंच चुके हो और आप अपने किसी खास या फिर अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हो। और ये भी तो हो सकता है कि आप जो है अरुण एफएम को 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जरूर सुन रहे होंगे, और आपकी शाम को खास बनाने के लिए अरुण एफएम लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, शाम की महफिल जिसमें प्ले करते हैं हम जो है बहुत ही प्यारे प्यारे बॉलीवुड ट्रैक्स, जो आपके शाम को खास बना देता है, दे देता है एक परफेक्ट एम्बियंस, है ना दोस्तों। हमारी कोशिश यही रहती है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आज भी कुछ गीत हम लेकर आए हैं जो वक्त के साथ साथ और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। जी हाँ, प्यार एहसास और यादों से भरा ही है हमारा पहला गीत। अगर कभी किसी की मुस्कान ने आपके दिल की धड़कन बढ़ा दी है दोस्तों, तो ये गीत आपके दिल की बात जरूर कहेगा। तो पेशे खिदमत है एक बहुत ही जाना माना और प्यारा सा गीत, बस आप सभी के लिए एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों आपसे वो आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ, शाम की महफिल के सेगमेंट के साथ और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा है FM बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। ले लेते हैं दोस्तों एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सब बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शाम की महफिल में। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो अपनी मधुर धुन, खूबसूरत अल्फाज और सदाबहार गायकी की वजह से हमेशा दिलों में बसते रहते हैं। जी हाँ, अगला जो है शानदार नगमा कुछ ऐसे ही है जो आपके लिए हम खास कर पेश खिदमत कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए।

पेशे खिदमत कर रहे हैं दोस्तों। इस सेगमेंट का आखिरी नजराना, और सचमुच में इस गीत को सुनने के बाद हमेशा दिल यही कहता है कि सच में कुछ कुछ तो दिल में होता ही है। एंजॉय कीजिए दोस्तों।

0: दोस्तों, फिल्म कुछ कुछ होता है कि इस शानदार गीत के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल की ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपके शाम को खास बनाने के लिए शायद हम कामयाब हुए हो। जी हाँ दोस्तों, और अब से बस कुछ ही देर में आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे, जी हाँ दोस्तों, अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, हम आप सभी के लिए पेशे खिदमत करने ही वाले हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। लेकिन इससे पहले हो जाए कुछ बातें आप सभी की भलाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शहर में बारिश हो रही है और अगर आप हिली रीजन्स में रहते हैं तो कुछ एहतियात आप जरूर बरते दोस्तों, क्योंकि जगह जगह जो है फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अगर आप लैंडस्लाइड प्रोन जोन एरियाज में रहते हैं तो आपको बहुत सावधानी से रहनी है, क्योंकि अधिक बारिश होने पर, वर्षा होने पर स्लाइडिंग हो सकती है और जान मान की हानि हो सकती है दोस्तों। ऐसे में आपकी सतर्कता आपका बचाव कर सकती है। अगर आपको अचानक

0: कुछ जोर की आवाज सुनाई दे या बहता हुआ पानी का शोर सुनाई दे तो आप तुरंत बाहर निकले और देखे कि क्या हो रहा है। अगर आपको जरा सा भी डाउट यानी कि आपको लगे कि वह जगह आपके लिए ठीक नहीं है तो तुरंत आप अपने सामने की बहुत जो क्लोज आपका पुलिस स्टेशन है या फिर प्रशासन है उनको संपर्क कीजिएगा। अगर जरूरत ना हो तो नदी के किनारे तो बिल्कुल ही ना जाए और फ्लड फ्लैश फ्लड आने वाले जगह पर बिल्कुल जाने की आप कोशिश ना करें और ना ही जो है आप उनके सामने में अगर आप रहते हैं नदी के आमने सामने रहते हैं तो आपको प्रशासन का जो डायरेक्शन यानी कि निर्देशन दी गई है उसका पालन आप जरूर करें। जल भराव के अगर हो रहे हैं जल भराव हो रहे हैं तो आपको वो स्थान को खाली करके अपने नियरेस्ट सेफेस्ट प्लेस में चला जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप बारिश के मौसम में ड्राइविंग करते हो तो बहुत सावधानी से ड्राइविंग कीजिएगा क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ गड्ढे बड़े बड़े बन चुके हैं पोथ होल्स है या फिर जो है बड़े बड़े जो है गड्ढों में पानी भर चुके हैं। ऐसे में बड़े वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और स्पीड लिमिट बनाए रखें। अपने कार के शीशे को उठाने के बाद में अंदर से ब्लोअर या फिर एसी आप ऑन कीजिए वाइपर ऑन कीजिए। स्पीड लिमिट बिल्कुल लिमिट से चलाएं। रात को लो बीम पे जो है आप गाड़ी यानी कि वाहन चलाएं और फॉग लाइट का इस्तेमाल करना ना भूले। अब बहुत बारिश हो तो ओनली एंड ओनली आवश्यकता होने पर ही आप घर से बाहर निकले। जी हाँ दोस्तों ये कुछ बातें मैंने अपनी तरफ से आप सभी को एहतियात के तौर पे मैंने कहना जरूरी समझा। तो चलिए अब देर ना करते हुए आप सभी को सुना देती हूँ चंद बैक टू बैक धुआंधार गीत। एंजॉय कीजिए
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारी आज की हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे आदि समाचार। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

दोस्तों, अभी आप आदि समाचार सुन रहे थे एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि साथ ही आपको मीडियम वेव के 444.4 मीटर पर, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, आप सुन सकेंगे मीडियम वेव तथा हमारे डीआरएम के मीटरों पर। आप

0: का अपना पसंदीदा आदि श्रोताओं का कार्यक्रम एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे आज के कलाकार के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कलाकार प्रोग्राम में। आज के कलाकार प्रोग्राम वो सेगमेंट होता है जहां हम एक ही कलाकार यानी कि एक्टर एक्ट्रेस गीतकार संगीतकार फनकार के बारे में बातें करते हैं। फिल्मी जगत के जाने माने चेहरों को हम आप तक लेके आते हैं, उनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के गीत आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों। जी हाँ, आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को पेश करने की सोची है जो उस दौर में भी बहुत ही ग्लैमरस लाइफ उन्होंने जिया और जो है अपने

0: ये वो अभिनेत्री है, जब दुनिया कहीं और ही थी तब वो ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक के रूप में पहचान उन्होंने बनाया और मीडिया में उन्हें फैशन आइकन और सेक्स सिंबल के रूप में भी जो है बहुत ही उनको उद्धृत किया जाता था। जिनत अमान पश्चिमी शैली से प्रभावित आधुनिक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को मूर्त रूप को देने वाली प्रमुख किरदारों के माध्यम से भारतीय सिनेमाओं में महिलाओं के चित्रण को पूर्ण परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिनत अमान को सबसे पहले 1970 में फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल प्रतियोगिता जीतने के बाद पहचान मिली और उनकी जो अभिनय की शुरुआत द ईविल वीथ इन 1970 में हुई और हंगामा 1971, हलचल 1971 जैसे फिल्मों में इन्होंने काम किया, लेकिन सफलता उनको मिली हरे रामा हरे कृष्णा से, जिसके लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जी हाँ, इनकी फिल्मों के बारे में बातें तो हम करेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं दो चार नाम तो मैं इनके फिल्मों का ले ही लेती हूं। 1970 के दशक में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही और सबसे हाई फी लेने वाली अभिनेत्री में से मानी जाती है। उन्होंने यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, अजनबी, वारंट, चोरी मेरा काम, धर्मवीर, छैला बाबू, हम किसी से कम नहीं और द ग्रेट गैम्बलर जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। डॉन 1978 में भी बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं उनके जो है सुपर डुपर हिट फिल्म जो है यादों की बारात से एक बहुत ही मेरे अभी जो मुझे जो पसंद है वो गीत मैं आप सभी को सुना देती हूँ। एंजॉय कीजिए।
1: ऐप के साथ AI powered

दोस्तों, इनका किरदार जो है सत्यम शिवम सुंदरम, एक विवादित फिल्म बनी, लेकिन इनके कपड़े और इनके अटायर को लेके बहुत ही चर्चे में रही ये फिल्म। लेकिन उनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए इनका नामांकित भी हुआ। और जो है इसके बाद इन्होंने अलीबाबा 40 चोर, कुर्बानी, दोस्ताना, इंसाफ का तराजू जैसे फिल्म, लावारिस, तीसरी आंख, पुकार, महान, जागीर शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इनके जो लाइफ है, उनके लाइफ में ट्विस्ट आ जाती है 1980 में, जब ये जो है अब्दुल्ला फिल्म में क्या कहते हैं आपको, संजय खान के साथ ये एक्ट करती है। और वहीं से इनके जीवन में ट्विस्ट आती है, संजय खान से इनको प्यार हो जाता है और ये परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। लेकिन इनको शादी के बाद पता चलता है कि संजय खान जो है पहले से ही शादीशुदा थे और बच्चों के पापा भी थे दोस्तों। लेकिन खराब तो तब हुआ इनके लाइफ में जब इंसाफ के तराजू के शूटिंग के दौरान संजय खान इनको टॉर्चर करने लगे। और कहा जाता है कि एक पार्टी में वो संजय खान ने इनको खींचते हुए एक होटल के रूम में लेके गए और वहां उनको खूब मारा पीटा, जिससे इनकी आंखों में चोट लग गई थी। और उसके बाद संजय खान को इन्होंने छोड़ दिया था। ये भी कहा जाता है नियति भी ऐसी हुई कि टिप्पू सुल्तान के शूटिंग के दौरान संजय खान जो है बुरी तरह से झुलस गए थे आग में। जी हाँ, और जनता मन मानती है कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि संजय खान ने इनके साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया। इसके बाद क्या होता है बताते हैं आप सभी को। लेकिन अब्दुल्ला के बारे में हमने, संजय खान के बारे में इतनी बातें कर दी, तो एक प्यारा सा गीत तो बनता ही है। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा जो है अमिताभ बच्चन के साथ रही, और अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने मैक्सिमम फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना जैसे महान कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया, देवानंद के साथ इन्होंने काम किया, और ये बहुत ही उम्दा जो है कलाकार में से मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एक और गीत हो जाए इनके ही फिल्म से।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू।
1: ए, क्या गा रही है?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
2: गा के? अच्छा।

0: Il tempo vola. Prendilo, prendilo, amore mio.
1: दोस्तों, ज़िनाता मन को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में दिया गया इनके हिंदी सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए. और यकीन मानिए, आज भी आपने देखा ही होगा ज़िनाता मन कितनी खूबसूरत लगती है. हम उनकी अच्छी हेल्थ की, यानी कि अच्छी सेहत की कामना करते हुए इस प्रोग्राम को यहीं पर संपन्न करेंगे. और हम आपको जाते जाते बता देते हैं कि शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का. मैं आप सभी को छोड़े जा रही हूं इस खूबसूरत सी गीत के साथ. आप बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को.

0: दोस्तों आप सुन रहे थे निशी समाचार। अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ। इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारे आज के हिंदी फिल्मी गीतों का यह सेगमेंट अभी यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Arkemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप आनंद उठा सकेंगे कुछ बेहतरीन बॉलीवुड ट्रैक्स के साथ। और वो कहते हैं ना कि तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है, पहले नहीं सोचा अब सोचने लगे हैं हम, जिंदगी के हर लम्हे में तेरी जरूरत महसूस करने लगे हैं। तेरा साथ ना छूटे बस दुआ है मेरी, तेरा ख्याल ना छूटे बस दुआ है मेरी, रूठे चाहे रब मेरा मुझसे कि रूठे चाहे रब मेरा मुझसे, मेरा प्यार ना रूठे बस दुआ है मेरी। तो चलिए दोस्तों, इस दुआ को ऊपर वाला कबूल कर ले और हम आप सभी को सुना दे बेहतरीन नगमों को। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे अपना गीत कार्यक्रम।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर

station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। नमस्कार, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं को गैर अतः का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आपके लिए आज फिर मैं लेकर आई हूँ अपनी मिट्टी की खुशबू यानी कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम सुनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग समुदायों के गीत। तो चलिए एक पल भी देर किए बिना शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत और सुनते हैं ये आदि गीत जिसे गाया है हम सबके फेवरेट तालुत मिजे ने।

तलुत मिजे सर, आपकी आवाज और गीत हमेशा यही फील कराते हैं कि आप हमारे सामने खड़े हैं और हम गाना के जरिए आपसे बात कर रहे हो। तो दोस्तों, अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आप पता नहीं गीत। ये गीत है भाई बहन के रिश्ते का, भाई बहन के प्यार का। भाई अपनी बहन से दूसरों की चीजें न ललचाने की बात करते हुए उन्हें वो सब देना चाहते हैं जो उनके बस में है। इस गीत को गाया है अपातानी के मशहूर गायक हागे तादा ने।

श्रोता, इस गीत से एक बात जरूर कहना चाहूंगी। जब हम अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ने लगता है, खासकर रुपए पैसे के मामलों में, तो कई बार हमारी जरूरत को फुलफिल करने के चक्कर में हम गलत कदम उठा लेते हैं और जब समझ आती है तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए मेहनत से हम जितना भी कमाते हैं, जितना भी पाते हैं, उतने में खुश रहने में ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत अरुण FM 103.1 MHz पर अपने रेडियो साथी गईर के साथ।

दोस्तों, माता पिता हमारा पहला गुरु और हमारा वजूद होता है। चाहे हम कहीं भी रहे, अपने दिल से अपने माता पिता का प्यार और ख्याल कभी नहीं खोना चाहिए। इसी तरह अपने माता पिता के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते ये वांचो गीत आप सुन रहे थे बोतिक लुकम की आवाज में। तो आइए अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं नोकपन हांगसिक की आवाज में, तुत्सा गीत।

103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें आप आनंद लेते हैं आपका अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश के गीतों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जहां एक खूबसूरत लड़की को मर्द अपने बहकने की वजह मानते हैं, वजह बताते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है गालो गीत हम सब के चहेते, जेली काई की आवाज में।

0: श्रोताओं, जेली काई द्वारा गाए इसी गालो गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे सप्ताह में 3 बार यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तो मिलते हैं अगले अंक के साथ, तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अपना गीत कार्यक्रम FM बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे पाश्चात्य संगीत कार्यक्रम के साथ। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
2: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's

0: And with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashvani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope today's song brought back memories, emotions, and good energy. Until next time, stay safe, stay happy, and keep listening to good music. Bye-bye.
1: दोस्तों अब यह आप आनंद उठा रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज के प्रोग्राम के साथ. अब से बस कुछ ही देर में पेशे खिदमत करेंगे हम. जी हाँ, भूले बिसरे गीतों का सेगमेंट. आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ.
2: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए. कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे. नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे. वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए. फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे. नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे. अपनी सुरक्षा अपने हाथ. सावधान रहे और सुरक्षित रहे. सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी. धन्यवाद.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500.
5: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई शुरुआत याद नहीं रखता, बस इतना लगता है कि ये अपनापन जाने कब से साथ है। कोई जब बिना वजह दिल के करीब लगने लगे तो शायद वही एहसास इस गीत में भी बसा है। दिल की कुछ बातें शब्दों से नहीं एहसासों से समझ में आती है, और जब कोई गीत उन एहसासों को आवाज दे दे तो वो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। लीजिए, एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत गीतों को।

दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ, भूले बिस्तरे गीतों के सेगमेंट के साथ और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी मौसम सिर्फ बदलता नहीं बल्कि दिल की भावनाओं को भी छू जाता है। बादलों की आहट, ठंडी हवाओं का एहसास और यादों की हल्की सी दस्तक, ऐसे ही एक खूबसूरत एहसास में सुरों को पिरोया गया है। जी हाँ, बहुत ही एक खूबसूरत सी गीत में। जी हाँ, और जो है उस गीत को मैं आप सभी के लिए पेश खिदमत करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बेहद पसंद आने को है। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की भूले बिसरे गीतों का ये सेगमेंट जो है अब यही पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट पे पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, चलते चलते दोस्तों वक्त कब हो चला है कि हम आपसे अलविदा कहे वक्त का पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस तीसरे प्रसारण सेवा को संपन्न करने की वक्त आ चुका है, लेकिन चलते चलते हम ये वादा करेंगे जरूर कि कल फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे ढेर सारे नए कार्यक्रम लेकर सुबह के ठीक 5:48 पर। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आपको हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, और कल का सवेरा आप सभी के जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सेहतमंद जरूर रहे। जी हाँ दोस्तों, और याद रखें, आप ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते जिसे अपने व्यवहार में कभी दोष नजर आता ही नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ संचरण निष्पादक टी तांजांग, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी के अपनी आरजे अपर्णा को आप सभी से रुखसत होने की दोस्तों इजाजत दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। और जी हाँ, आगे के कार्यक्रमों के लिए बने रहे एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है, इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए
0: जी?
1: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में

0: तीन गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेट्रल मांगते हैं
1: जी।
0: और कोलेट्रल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेट्रल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है
0: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं। इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
0: तो आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो

0: विपिन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है, उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं, तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
1: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं, इनको जेम से करना है। ये हमारे जीएफआर के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है। तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें, पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी है। और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को, उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
0: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला, हिमाचल प्रदेश।
0: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेने का, तो कितने प्रतिशत में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
0: जी
1: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8-10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे सीजीटीएमएससी का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
0: जी, मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
3: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से राशिद अहमद खान
0: जी।
3: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए, या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू।
1: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये 3 श्रेणियां हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें, तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं। जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी।

0: और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन
1: जी
0: प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमईज इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो
1: खो
0: देंगे
1: देंगे
0: और ये जो बेनिफिट एमएसएमईज के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे।
1: जी
0: तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से विपिन जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
2: मैम मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं? क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं, सक्सेस नहीं
1: जी
2: हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग ही शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है
1: शायद
0: उसका।
1: उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस लिहाज
0: जी
1: से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा।
1: जी
0: पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक, 1,65,00,000 एमएसएमईज हमारे साथ पंजीकृत थे।
1: जी
0: और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार
1: सर।
0: फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड
1: जी
0: मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया है कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए 0 स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए 1 स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए 2 स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया
1: और
0: जाता है।
1: अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है?
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी
0: वो भी काफी सख्त है।
1: जी
0: तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये
1: जी
0: 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: जी हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
3: है। जी मैडम जी नमस्कार,
1: नमस्कार।
3: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो उस

0: एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजिस में कितनी निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए, कुछ के जो मजदूर काम करते हैं उनको और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
1: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी
2: जी
1: होती हैं।
2: होते रहे।
1: तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनके अनुपालना करती करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइजेस एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो है वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
2: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
1: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार हमने ये देखा, मंत्रालय के पास हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे
2: जी
1: रूप
2: जी
1: में आपसे साझा करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए, कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशंस की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया, और उसके बाद काफी स्टेट्स ने
2: जी
1: अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
2: जी हाँ। अब एक और श्रोता लेते हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार, सवाल पूछें।
3: कि जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
1: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1 करोड़ 65 लाख से अब 8 करोड़ 70 लाख से ऊपर हुए हैं, और हमारे एमएसएमईज जो है वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं।
2: जी
1: अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि RBI रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3 लाख करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है,
2: जी।
1: और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा
2: जी
1: हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1-800-1806-763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
2: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी।

0: कोको जी
1: हेलो।
0: जी हाँ, अपना सवाल पूछें।
1: हाँ नमस्ते मैडम
0: जी।
1: हेलो
0: जी, हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
1: अच्छा, एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
0: जी
1: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास दो कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है
2: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक पीएमई जीपी हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
0: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि एमएसएमई को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
2: जी बिल्कुल, एमएसएमई को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे एमएसएमईज को मिलता है, और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी, तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
0: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
2: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है, जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी एपीआई बैकिंग है, जिसके अंदर हम जीएसटी, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है। इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं।
0: चाहते चाहते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था, 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था, 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं, 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूल किट प्राप्त हो चुका है, 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं, तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी।
0: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद, अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: धन्यवाद प्रियंका।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
4: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट

0: जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रख रखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का बुधवार को अनंतपुरम स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कल रात अफगानिस्तान सीमा के पास हवाई हमले किए। इनमें पक्तिका और कुनार प्रांतों के इलाकों को निशाना बनाया गया। अफगान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिक मारे गए और 163 अन्य घायल हो गए। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of the Armed Forces, were also present on the occasion. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order.

0: फीफा विश्व कप में अमेरिका के ह्यूस्टन में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील का सामना जापान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनय नगर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ दी ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें। श्री मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 वर्ष की साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से आगे बढ़ेगी। श्री मोदी द्वीपीय देश की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी यात्री उड़ान सेवाएं फिर शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बीच 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। उड़ान संचालन अभी सीमित है और सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही हैं। ईरान का इमाम खमेनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9 जून को फिर खुल गया, जिसके बाद कई एयरलाइंस चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर उड़ान संचालित कर रही हैं। इसराइली रक्षा बल IDF ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के 3 कमान केंद्रों पर हमले किए हैं। उसने इसे हिजबुल्ला के युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के जवाब में उठाया गया कदम बताया। एक रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में IDF ने कहा कि उसके बलों ने दक्षिणी लेबनान के नबातीह और मायफादौन क्षेत्रों में हिजबुल्ला के 3 कमान केंद्रों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने एक लॉन्चर पर भी हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला कथित तौर पर इसराइली बलों पर हमले करने के लिए कर रहा था। IDF ने कहा कि उसने दक्षिण पश्चिम लेबनान में हिजबुल्ला की एक भूमिगत सुरंग को भी नष्ट कर दिया है। इस 200 मीटर से अधिक लंबी और 50 मीटर गहरी सुरंग में सैकड़ों हथियार और कई लॉन्च शाफ्ट थे, जिसका कथित तौर पर इसराइल के नागरिकों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। शुक्रवार को इसराइल और लेबनान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद इसराइल और हिजबुल्ला के बीच झड़प की घटनाएं जारी हैं। शनिवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये समझौता संघर्ष समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है और दोनों देशों के बीच शांति समझौते का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 36 आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। ये पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और अपनी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने के लिए सीमा पार हिंसा जैसी हताशापूर्ण हरकतों के उसके व्यर्थ प्रयास दिखाता है। भारत ने पाकिस्तानी हमलों में अपने प्रियजनों को खोने वाले अफगान परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि श्रीलंका में सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई। इससे संबंधित खबरों पर श्री मिश्री ने आज कहा कि इस तरह की बातचीत ना तो नई है और ना ही भारत सरकार इसे मान्यता देती है। विदेश सचिव ने कहा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इस तरह के आयोजनों में उसकी कोई आधिकारिक भागीदारी, समर्थन या संलिप्तता नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोप में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य सहित कई देशों में तापमान के नए रिकॉर्ड बने हैं। यूरोप में 19 करोड़ से अधिक लोगों को 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट।
2: इटली में भीषण गर्मी के कारण

0: कारण रेड अलर्ट वाले शहरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड और हंगरी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। फ्रांस और जर्मनी में ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पेरिस में भी हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 21 जून से यूरोप में 1300 से अधिक मृत्यु भीषण गर्मी से हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा कि यूरोप अन्य किसी भी महाद्वीप की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जहां तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अलका सिंह।
1: इस बीच दुबई सरकार ने गर्मियों के लिए आवर फ्लेक्सिबल समर नाम की नई योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब उन्हें हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: दुबई सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई ये पहल 29 जून से 10 सितंबर 2026 तक चलेगी और इसमें दो तरह के कार्य व्यवस्था पेश किए गए हैं, जो कर्मचारियों की जरूरतों और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहली व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी सोमवार से गुरुवार तक प्रतिदिन 7 घंटे और शुक्रवार को 4.5 घंटे काम करेंगे। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत सोमवार से गुरुवार तक 8 घंटे काम करने की अनुमति है। इसमें शुक्रवार को अवकाश का दिन निर्धारित किया गया है, जिससे कर्मचारियों को प्रभावी रूप से 3 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। दुबई सरकार के मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक अब्दुल्ला अली बिन जायद अल फलासी ने कहा कि कर्मचारियों का कल्याण और जीवन की गुणवत्ता प्रदर्शन की कीमत पर नहीं आती, बल्कि इसके विपरीत ये संस्थागत सफलता और दीर्घकालिक स्थिरता के प्रमुख कारकों में से है। ये पहल संयुक्त अरब अमीरात के परिवार के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो सरकारी सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए पेशेवर, पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के बीच स्वस्थ संतुलन का समर्थन करती है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
1: भारत और सऊदी अरब ने जेद्दाह में आयोजित सऊदी जल सप्ताह के दौरान जल संसाधनों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल खान और सऊदी अरब के पर्यावरण, जल तथा कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फदली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। कनाडा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष की साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से आगे बढ़ेगी। श्री मोदी द्वीपीय देश की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौटे। अमरीका और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमला रोकने की सहमति के बाद संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी यात्री उड़ानें फिर शुरू। पाकिस्तानी हवाई हमले में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा की। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कई देशों में तापमान का नया रिकॉर्ड दर्ज। और अब से थोड़ी देर में फीफा विश्व कप में अमेरिका के ह्यूस्टन में राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।